0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听。在。
1: किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बाल कांड का भाग 59 69। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

पंदपतन निपातमन इन तचता सकित सबजासिभु यमदतस क्रोधुपिच पड़तवन द्वदिभु नंबजास नंगन दत्तदत्ता पतुम्बन तवनन सबसद द्वदतु सिंगतिगदतुस रुपिच हिंग द्वदतुस हिंग तिगदतुस क्रोधुपिच पड़तवन तवन बदिकुत्न नमन तवन निमन्यक्सिकन पदिंकतन सतुतवन यंगबुयुम पन्नत जड़ि सबयुम्न यकनी सबसद द्वादिभु सदतुस्कुपीच हम पिज सपयुक हिस्टोरी स्निय वकील मंत्री कम्युनिकसी जन पमंगनन पदसनिंज जगत चंद्रशेखर पमासानी मंकाईतन कबंकितन किनजाइनी निगन पंदकतन गंजयंग तस्तुक्तुर पंदकतन तसवुतरिस्टेटेगिस टॉप डाउन अत अतस्वभाव यंग मंचकुप इडेंटिफिकेसी टोटल पासर यंग दप डी जंकाउ अत टोटल एड्रेसेबल मार्केट पन्नतापन टारगेट डन अकुंतिबिलिटास डी पाडुकन दगन स्ट्रेटेजिस बटम अप अत बवातस यंग बदपुकुस पड़क कतयिबतन तनगा कज यभी जंजुत वकई मंतरी तसबुद मनगस्कन बा सेगमेंट पास जन योगिष्टिक इंडिया पर सुडा मंचतकन पर तुमन सबस तुजुपुयु पर्सन डिजरंग इंटीग्रेसी टेक्न योगी जन परयुआसन कमितान ई कमर्स सत कपिपिन सतनी मुय मंजबा ततर पंद पदन दति जैनन पर्स तचत सकित नाम रतुस करुपिच बदकत पन्नर पन्न जैनन पंगिरिमन बदबसिस ओतेपे पर्यटकन भया एस एम एस पन्नरिमान पंबायदन डिजिटर्जन उपेई सत कर्ज समा बे दुआ बे दिंगन बदबरी प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स तत्कमुका यनन पासर सजा डिपत किदकन ममरी के पचन सिंधु मंगासिकन पंद पतन हिंगा सप्यु दिबु क्रोधु पिच रेसन रेसियोन अजिससी दुटे सुडा जिजाकुकन गुना ममुंकिनन पंगिरिमान यंग यभी चपत

0: ಇದು ತಡಿ ಯಗುದೇಕದಲ್ಲಿ ನಗದ ಬರ್ಗಿಯನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಟಿಂಡಿಯ ಉತ್ತರ ಹರ ಪಂಡ ಸುಡನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಗುಯಿತು ಬದಿಕುತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಸರಿಕನ್ ವಂಚರ ಜನ್ ಡಿಸ್ಕುಸಿ ದಯ ಮತ ಸ್ಪೋಟ್ ಜೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬದಿಕುತ್ತೀನಿ ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯ
1: Spotlight. Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaura Dhawanlal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
2: Thank you for having me. Yep.
1: The Cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intra-state movement of food grains and FBS dealers, margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms, and just to give another holistic perspective.
3: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है. आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है. फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम. सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत. दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृहमंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
0: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
5: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi, reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
8: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
9: Three major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology.
4: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
7: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards, and control cross-border smuggling. Union Home Minister Amit Shah will be on a visit to Gujarat today. During his visit, the minister is scheduled to inaugurate and lay the foundation stones of nearly a dozen public utility, education and rural infrastructure projects in Ahmedabad and Gandhinagar districts. We have a report from our correspondent.
3: Beginning his tour in Kalol Taluka in Gandhinagar, the minister will dedicate several public amenities developed under corporate social responsibility initiatives, including Jedwa Village Lake, three new library buildings and new primary school buildings. In the evening, Mr. Shah will attend programs in Ahmedabad to inaugurate a new hostel building at Mata Umiyadham Complex in Sola and Bharat Mata Square at Bhimjipura. Later, the minister will also chair the high-level review meeting at Shahibagh Circuit House to assess the infrastructure readiness for the upcoming Olympic, Commonwealth and World Police and Fire Games. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
7: The Union Public Service Commission, UPSC, has for the first time released the provisional answer key for the Civil Services Preliminary Examination 2026. In a statement, the Commission said that the candidates who appeared for the examination can submit representations through the online question paper representation portal till 6 p.m. on the 31st of May. The candidates have to submit representations along with brief explanations and supporting documents from three authentic sources. The Commission said the final answer key will be released only after declaration of the final result, in line with the existing practice. The Madhya Pradesh High Court has cancelled the anticipatory bail of retired district judge Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. The Bhopal Sessions Court had granted her this bail on May the 15th. The High Court said the Sessions Court had ignored the victim's family's allegations while granting bail. Meanwhile, Twisha's husband, Samarth Singh, was handed over to the CBI by a local court on Wednesday. The family of Twisha's husband claims it was suicide, but Twisha's family says she was murdered. The CBI took over this case from the Bhopal Police SIT on May the 25th. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India Meteorological Department, IMD, has said that heat wave to severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 days. The weather agency has issued red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over Vidarbha today. In Madhya Pradesh, severe heat wave conditions are scorching the state with temperatures crossing 45 degrees Celsius across multiple districts. A report.
0: This time, Nautapa in Madhya Pradesh is unusual. Along with extreme heat, dust, storms and rain are also being seen. The weather department has warned of heat wave in 46 districts today. Khajurao and Nogaon in Chhatarpur district are the hottest cities in the state. They have been topping the heat chart since May 18. Yesterday, both cities recorded 46.6 degrees Celsius. Bhopal was at 43.6, Gwalior at 44.5 and Jabalpur at 43 degrees. Good news is that the weather is likely to change from tomorrow. Rain is expected in many districts till May 31st due to a western disturbance. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
7: Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department also predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry today. IMD said that thunderstorms accompanied with hailstorms are expected over Uttar Pradesh, Kanchetic West Bengal, Haryana, Chandigarh and Uttarakhand during the next 2 days. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In the national capital, Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In her message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. In Uttar Pradesh, the administration has made elaborate arrangements and taken precautions for the smooth celebration of Bakrid today. Our correspondent has filed this report.
5: People are getting ready to reach the mosques nearer to them to offer the prayers of Bakrid. Ritual of Qurbani will take place after Namaz. State government has already issued an advisory directing all district police chiefs to ensure that no new tradition should start and no sacrifice of restricted animal should take place. After the directions of DGP Rajiv Krishna, police flag marched in sensitive areas to ensure that festival is celebrated peacefully. Police are keeping extra vigil at sensitive areas in cities like Kanpur, Muradabad, Sambhal, Rampur, Meerut and Mau. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
7: Home Minister Amit Shah today paid tributes to Swatantra Veer Vinayak Damodar Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said, "The fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar, dedicated his entire life to the service of the motherland." He said, "From the life and writings of Veer Savarkar, we can learn what unwavering devotion to the nation and ideology truly means." In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could only score 196 runs in 19.2 overs. Vaibhav Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. Two-time Paralympic champion Sumit Antil shattered his own world record in the men's javelin throw F64 category at the 8th Indian Open International Para Athletics Championships 2026 in Bengaluru yesterday, producing a throw of 72.82 meters, representing Haryana until delivered a sensational gold medal winning performance to surpass his previous world record of 73.29 meters, which he had set at the 2022 Asian Paragames in Hangzhou. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Alireza Firozshah in the final game following a hard-fought classical draw. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
10: Thank you, Sunil. The Supreme Court of India upholding the validity of the special intensive revision conducted by the Election Commission of India is the top news in many dailies today. SIR valid, falls within ECI's powers, says SC, is the headline in Hindustan Times. The observation of Madras High Court defending free speech in a judgment on Tamil film Karuppu, that judges need not be treated as holy cows and that corruption within judiciary cannot be denied, finds front page mention in the Times of India. And finally, the Statesman mentions that a joint study by Banaras Hindu University, University of Colombo and others has revealed a 57,000-year-old human journey hidden in Sri Lankan DNA. And with that, it's back to you, Sunil.
7: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi, reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul-Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीक़ैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहाँ हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निज़ाम के साथ मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट की इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मुल्क की

0: लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 3री रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ़ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। एसएसपी सतह के अफसर की क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम सांची स्तूपा के मुकदस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार सरीपुत्रा और मोदगलियाना से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात आवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा उन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोज़ा प्रोग्राम में ज़राअत और मुतालिका शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौरखौस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार ज़राअत, पैदावार में इजाफा, आबोहवा में लचक है, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और किसानों की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज करते हुए आने वाले खरीफ सीजन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौरखौस किया जाएगा। वजारत ने मजीद कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से मरकजी हुकूमत रियासती सरकारों ICAR ज़रई इदारों और दीगर मुतालिका फरीकों को खरीफ सीजन के लिए मरबूत कार्रवाई और कलीदी तरजीहात पर तबादला ख्याल के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि मरकजी और शिमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आज शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज तेज से बहुत तेज बारिश की भी पेशगोई की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भारत बांग्लादेश सरहद पर चौकियां बनाने और खारदार बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे के क्याम के लिए 142.79 एकड़ अराजी BSF के हवाले कर दी है। यह हवालगी BJP हुकूमत के इस फैसले का हिस्सा है जो 11 मई को काबीना की पहली मीटिंग में किया गया था, जिसमें सरहद पर बाड़ लगाने और मुतालिका बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए 45 दिन के अंदर अंदर 600 एकड़ जमीन की मुंतकली की गई थी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कोएम्ट एडुटेक को इम्तहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने कहा कि इल्ज़ामात गलत, गुमराहकुन और हकायक पर मबनी नहीं हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी कोकेश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजिया से पीछे हैं जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ है नितिका।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के SIR अमल को दुरुस्त और आईनी करार दिया।

0: 3 लाख टन का तखमीना। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
1: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुकाम से बैन अलावामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाल मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। और आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन, राग है शुद्ध सारंग। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना राकेश पाठक का गायन। राग था शुद्ध सारंग, तबले पर संगत करी थी आशीष मिश्रा ने और हारमोनियम पर जाकिर धोलपुरी। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वस्त्र उद्योग आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि तकनीकी, औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में वस्त्र रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत रेशे तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जैसे प्रमुख आयाम इसकी प्रगति के आधार स्तंभ हैं। विशेष जानकारी के लिए सुनते हैं भेंट वार्ता। वस्त्र उद्योग में रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण। डॉक्टर एमएस परमार, प्रख्यात वस्त्र वैज्ञानिक और महानिदेशक, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ नित्रा से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ये जो वस्त्र उद्योग है, इसका जो रसायन है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
2: पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले नित्रा से स्टार्ट करता हूँ। 1974 में हमारा ये संस्था स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में आती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके अलावा आसपास के जितने भी टेक्सटाइल्स के घराने थे बड़े बड़े, मोदी ग्रुप और आपके बिरला ग्रुप, डीसीएम ग्रुप, ये लोग बहुत मतलब उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया कि हमारे इस संस्था को गाजियाबाद में स्थापित कर सके, क्योंकि आसपास के इलाकों में ये लोग रहा करते थे। इनकी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती, आप तो जानते हैं, मोदी मिल हुआ करती थी जिसके नाम पे मोदी नगर उस समय लगा। तो एक टाइम ऐसा था कि ये लोगों ने मिलकर यूपी गवर्नमेंट से गुजारिश की कि हमें ऐसा कोई संस्था होना चाहिए जो, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्रीज वालों ने, इन्होंने मिलकर ये संस्था का निर्माण किया और 1974 में ये स्टार्ट। तो इस संस्था का जो मेन काम है सर, पहला काम ये है कि अलग अलग तरह से रिसर्च करना, जिसमें गवर्नमेंट जो फंड करती है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फंड करती है, उसको करके कोई एक नया रिसर्च करके जो भी उसका फाइंडिंग आए उसको कमर्शलाइज करे और इंडस्ट्रीज को दे। वो तो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हुआ। और दूसरा हुआ कि उस समय क्या होता था, लोगों को प्रॉब्लम आती थी कई बार इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में खास करके। जैसे देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारा कहां से काम स्टार्ट होता है, आपको फाइबर होना चाहिए जिसे कहते हैं रेशा, फाइबर से लेके फिर आपको धागा बनाना है, धागा से वस्त्र बनाने हैं और फिर उसको डाई करना है, रंगाई करना है, सब कुछ करते हुए उसे फिर फाइनली जाके गारमेंट बनता। तो ये सारा प्रोसेस में जो भी मशीन यूज होती थी, जो भी कुछ होता था, तो काफी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स लोग हुआ करते हैं, आज भी हैं, जो इंडस्ट्रीज को जहां पर भी प्रॉब्लम आती है, धागा बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या रंगाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी संस्था उनको हेल्प करती है, तो हम उसे कंसल्टेंसी वर्क कहते हैं। तो थर्ड एक फिर रिक्वायरमेंट ऐसा हुआ कि अगर कोई भी आप टेक्सटाइल बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसे देखी जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी लैब होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी के बारे में सारा एनालिसिस किया जाए, उसमें देखा जाए कपड़े की क्वालिटी क्या है, धागे की क्वालिटी क्या है। तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लैब स्थापित हुई जिसमें कि हम कपड़े की सारी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सभी गुण उसमें चेक करते हैं और इंडस्ट्रीज वाले बहुत ज्यादा सैंपल इधर भेजते हैं, कमर्शियल टेस्टिंग भी करते हैं, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके कि कपड़े और धागे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारा काम भी करते हैं। फोर्थ हमने क्या किया, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आई, उन्हें स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, तो फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट किए। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंडस्ट्रीज को देते हैं, ट्रेन्ड पर्सन हम देते हैं लोगों को। गारमेंट इंडस्ट्री हमारे आसपास बहुत है, गाजियाबाद के आसपास, नोएडा वगैरह जितने गुड़गांव है, बहुत गारमेंट इंडस्ट्रीज है, उनको रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो देने लगे। फिर उसको देखते देखते सर हमने एक कॉलेज भी अपना बनाया जिसको नित्रा टेक्निकल कैंपस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम तीन ब्रांचेस हम लेके रन कर रहे हैं, उसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है,

0: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AIML, जो हमारे लखनऊ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है।
1: पारंपरिक रूप से तो लोग जनरली जानता है कि कपास है, ऊन है, रेशम है, इससे अलग आपने किस तरह के अन्य रेशों के निर्माण के लिए कुछ प्रयास किए हैं, अनुसंधान किए हैं और उनका क्या उपयोग है?
0: सर, आपने एक बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है जो इस टाइम बहुत कहते हैं बर्निंग इशू चल रहा है। हम लोग 20 साल से एक फाइबर पे काम कर रहे थे। आपने बोला कि जैसे रेशे बहुत तरह के होते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं नेचुरल रेशे, जो मतलब नेचुरल प्रकृति उससे हमें मिलते हैं, लाइक जैसे आपने कॉटन कपास का बोला, ऊन है, सिल्क है, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं कि ये रेशे, जूट है, ये सारे रेशे हमारे नेचुरल उसमें आते हैं। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक हैं, जैसे आपके पॉलिस्टर हुए, आपके नायलॉन हुए, ये सारे सिंथेटिक उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के रेशे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे थे, काफी हमारे पास काम चल रहा था। तो अब क्या हो गया, एक न्यू एज फाइबर, मतलब नए तरह से नया एक फाइबर के ऊपर काम होने लगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसको एक स्कीम का नाम दिया गया न्यू एज फाइबर, मतलब नए जमाने का रेशा,
1: जो कि कपड़ा निर्माण के लिए सबसे प्राथमिक चीज है।
0: क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या हो गया, हम प्रकृति के नजदीक जाने लगे हैं। हम अब धीरे धीरे वो सिंथेटिक से छुटकर हम दोबारा से अपने पुराने टाइम में आने लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो रेशा, जैसे आप पॉलिस्टर पहनते हैं या नायलॉन पहनते हैं, ये डिग्रेड नहीं होता। मतलब अगर आप ये पड़ा हुआ है कहीं जमीन में, दबा हुआ है तो वहां रहेगा, वो खत्म नहीं होता। कॉटन का रेशा अंदर पड़ा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर वो वहां से खत्म नहीं होगा, अगर डिग्रेड नहीं होगा, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा, हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान होने के चांसेस हैं। उसको देखते हुए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये नई स्कीम लगाई। तो उसमें कुदरती ऐसा हुआ कि हम ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहे थे एक नए फाइबर पे। नया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फाइबर के रूप में नया है, अदरवाइज वो बहुत पुराना प्लांट है, जिसको कि मिल्कवीड फाइबर हमने कहा। पर एक्चुअल में अगर हिंदी में कहा जाए या दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में बोला जाए, भाषाओं में बोला जाए दूसरी में, तो उसको हम आंख, आंखा, अक, मदार, अनंतमूल, ऐसे करके कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, सबने देखा है ये प्लांट कहाँ लगा होता है। तो इसको इंग्लिश में मिल्कवीड और बॉटनिकल लैंग्वेज में कैलोट्रोपिस बोलते हैं। तो उसकी अलग अलग वेराइटीज होती है, तो कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। 20 साल से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे सर। और मैं थोड़ा सा इसमें एक आपको और समझने के लिए बताना चाहता हूँ, और सुनने वालों के लिए भी बहुत ईजी होगा कि क्या है ये। आपने देखा होगा कि बचपन में जिनकी एज मैं कहता हूँ 40+ है, वो तो जरूर जानते होंगे कि बचपन में हम जब छोटे इधर उधर खेला करते थे तो हम देखते थे कि फाइबर उड़ा करता, जिसको बोलते थे बुड्ढी माई का बाल, हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो चीज है, वही फाइबर है कि इतना हल्का है कि हवा में उड़ता है, अंदर से 70% से ज्यादा खोखला होता है। तो इस फाइबर पे हमने काम करना शुरू किया, और पिछले 4 साल पहले हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक हमें प्रोजेक्ट मिला, जिसे हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के नाम से, NTTM के नाम से हम जानते हैं, उससे हमें प्रोजेक्ट मिला कि ठंडे इलाकों में जो हमारे सैनिक हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, पहाड़ों पे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर -20, -40 degrees तक जाता है, उनके लिए कपड़े बनाए जाएं, जो कपड़े हल्के भी हों और गर्म भी हों, और इंडिया से ही कोई ऐसा चीज बने, प्राकृतिक रेशा हो, जो हमारे काम आए। अभी तक क्या हो रहा था, हम इम्पोर्ट कर रहे थे फाइबर उनके लिए, कपड़े इम्पोर्ट हो रहे थे उनके लिए। अब हमने कहा कि ठीक है, हम बनाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, हमने उसे स्टार्ट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत अच्छे क्लॉथ बन के आए। फिर हमने अपने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक कल्टीवेशन स्टार्ट किया सर उस फाइबर का, जिसे मिल्कवीड फाइबर और मदार के नाम से, रंग के नाम से जाना जाता है। और उसमें सर सबसे बड़ा रोल ये रहा कि ये इतनी आगे तक प्रोजेक्ट नहीं जाता, अब तो कमर्शियल हो गया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ गई हैं। अगर आपने नाम सुना हो, वर्धमान ग्रुप है, वेल्सपन ग्रुप है, आपका गंगा एक्रो वूल है, बड़े बड़े ग्रुप RSW है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं।
1: इस कार्य के लिए जो आपने किया है, जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लिए थर्मल परतों वाला वस्त्र विकसित करना, और काफी सराहना की गई।
0: मुझे जो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ने दिया था, जिसे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ने दिया था, तो एक मुझे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना था, मशीन खरीदनी थी, जिसके मुझे पास पैसे नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी हमारे उद्योग भवन में, टेक्सटाइल मिनिस्टर उनकी मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने एक रिक्वेस्ट वहां भेजी, तो मुझे भी बुलाया गया। मैं तो टेबल था, बहुत बड़ा टेबल था, मैं लास्ट में कोने में बैठा हुआ था, तो सब मीटिंग हो गई। तो उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तो मिनिस्टर सर ने कहा हाँ हाँ बताइए। तो मैंने कहा सर हम एक इस तरह के फाइबर पे काम कर रहे हैं, और ये फाइबर बहुत गर्म है, और हमने अपने यहाँ पर 3 acres में लगाया हुआ। उन्होंने मुझे बुला लिया और उस मीटिंग में आप कहिए बहुत बड़े बड़े लोग उसमें बैठे हुए थे, हमारे उस समय के जो इसरो के चेयरमैन वो अच्छा। थे, प्राइम मिनिस्टर सर के जो साइंटिफिक एडवाइजर वो थे, और नीति आयोग से बहुत बड़े बड़े लोग सब लोग उसमें बैठे हुए थे मीटिंग में। तो मैं उनके पास आया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको वो दिखाया, फाइबर देखा, उन्होंने देखा, वो सब लोग

0: बहुत खुश हो गए, कह रहे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतना हल्का और इतना गर्म देने वाला है, बहुत अच्छा। तो मीटिंग के बाद में फिर उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और बुलाया, सारा पूछा। वो जो पोजीशन थी सर, वो पॉइंट था जहां पर सब कुछ चेंज हुआ। फिर उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने हेल्प करना शुरू किया, कई जगह उन्होंने गाइडेंस भी दिया, आप ऐसे करिए। फिर उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वालों को हमारे साथ जोड़ा, जो आज यहाँ तक हम पहुंच पाए। फिर लास्ट ईयर भारत टैक्स हुआ, जिसमें स्पेशल एक प्रेजेंटेशन इसकी रखी गई, मिल्कवीड की, पूरा हमने प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले में रखे, और प्राइम मिनिस्टर सर के साथ में भेंट हुई हमारा। तो वो बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए, उसमें हमारे मंत्री सर भी थे वहाँ पर, और मेरे साथ ही सबसे ज्यादा उन्होंने डिस्कशन किया, क्योंकि एक नया चीज थी। उन्होंने अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर किए कि ये तो वो प्लांट है जिसकी हर चीज मेडिसिनियल है। उन्होंने बताया इसके पत्ते को, जो हमारी माँ है जो, वो उसके पत्ते तोड़कर जब हमें चोट लगती थी या स्वेलिंग होती थी तो वो उसको गर्म करके लगाया करती थी। उसका जो दूध है वो भी एंटी एलर्जिक है। तो उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने फिर मुझे एडवाइस किया, सजेशन उन्होंने बताया कि आप इसरो के साथ मिलकर काम करिए, क्योंकि उन्हें भी हल्के कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको ऊपर जाना होता है। तो हम इसरो के साथ भी थोड़ा काम कर रहे हैं। हमने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, अब तो बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजस्थान में रूमा देवी फाउंडेशन है, बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहाँ कैश क्रॉप में तो इसका रोल बहुत बड़ा हो गया। इसमें एडवांटेज ये किसानों के लिए बहुत फायदा है। किसानों का क्या है, अभी तक कॉटन का केस में इंडिया में जो हम कॉटन लिंट जो बोलते हैं, फाइबर फॉर्म में जो रेशा फॉर्म में आता है, वो करीब हम एक हेक्टेयर में करीब हम कहते हैं 400-450 केजी हमें मिलता है केवल। मतलब एक हेक्टेयर में आप मान लीजिए रफली 2.5 एकड़ होता है सर। तो लेकिन ये जो है फाइबर, एक एकड़ में भी आपको 300-350 केजी मिल जाता है, यानी कि उससे ऑलमोस्ट ट्रिपल आपको फाइबर मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, एक बार लगा दो भूल जाओ, 10-12 साल तक आपका ये प्लांट चलेगा। उसमें आप तोड़िए, उसके पत्ते यूज करिए, उसके तनों से भी धागे निकलता है, रेशा निकलता है, उसको यूज करिए। अभी हमने इसमें वीगन लेदर बनाया है सर, उसका जो वेस्ट था उसको वीगन लेदर में कन्वर्ट कर दिया। उसके जो बीज निकलते हैं उसमें से ऑयल निकलता है जो फेस क्रीम में काम आता है। तो पूरा कंप्लीट हमने उसका प्लांट का हर चीज यूटिलाइज करने लगे, जिससे कि हमारे किसानों को एक अच्छी क्रॉप मिले, कैश क्रॉप मिले। प्लस उसके साथ साथ हमारी इसमें बहुत सारी हमारी एक तरह से लेडीज बहुत जुड़ी हुई हैं, मतलब नारी सशक्तिकरण की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
1: वस्त्र जो आप बनाते हैं और उसके लिए जिस तरह की एक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजों का अंतर होता है, मतलब किस तरह से उसको बनाते हैं और किस तरह से ये उद्योग का दर्जा ले लेता है?
0: देखिए, फायर फाइटर सूट्स अभी भी इंडिया में हम बहुत कामयाब नहीं थे। ठीक है, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहाँ पे फायर फाइटर्स अपने फायर फाइटर क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन आप इंटीरियर में चले जाइए, अभी भी नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के ही लोग फायर फाइटिंग में लग जाते हैं, जिसमें उनकी जान का खतरा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसमें हमने एक नया चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया है, जिसको हम बोलते हैं फायर एंट्री सूट। मतलब आग के अंदर जा सकता है कोई आदमी पहन के, और वहां पर आप 2 मिनट रह के कोई भी काम है, किसी को बचाना है, किसी को उठाना है, कोई गैस कहीं लीक कर रही है उसे बंद करना है, वो करने के लिए वो एक ऐसा सूट बनाया गया है हमारे संस्था में, जो कि ये काम कर सकता है कि अंदर जाके वो कर सकता है। ये सूट अभी तक बाहर से इंपोर्ट हो रहा था, इसकी अगर इंडियन करेंसी में कहें तो ये 15-20 लाख रुपए का एक सूट पड़ता था। हमारी एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा इनका रिक्वायरमेंट था, और हमारे एक फॉरेन करेंसी का आप कहिए कितना ज्यादा हम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि हमें खरीदना, हमारे जान की हमें रक्षा करनी है तो हमें खरीदना पड़ता था। पर वो हमने यहाँ पर बनाया है, इंडिया में ही बन गया है, और हमने इसको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है, अब वो बना रहे हैं सूट और इंडिया में ही कर रहे हैं। तो इन सूट को बनाने के लिए हमने कोशिश किया है कि जितनी इंडिया में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का मटेरियल वही उसमें यूज किया जाए, तो ये हमने फायर फाइटर सूट पे काम किया है।
1: बहुत अच्छा। और अभी गर्मी जैसी आ रही है, आग लगने की दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, और कई बार तो जो हाई राइज बिल्डिंगे है महानगरों की, उसमें कभी भी किसी भी दिन किसी भी सीजन में आग लग जाती है। तो इस तरह के वस्त्र बहुत ही कामयाब होंगे।
0: कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र टेक्सटाइल है, जो रोजगार देता है सर। इसमें मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सारा, मतलब आप देखिए कि बहुत बड़ा उद्योग इसमें है, क्योंकि कपड़ा हर एक को चाहिए और हर एक कपड़ा पहन रहा है, हर चीज में कपड़े की जरूरत है। टिश्यू है वो भी कपड़े में आ जाते हैं आजकल, नॉन वूवन टिश्यू, वो भी कपड़े का पार्ट हो जाता है। डायपर्स यूज कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हैं, ये सारे कपड़े के ही पार्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा उद्योग है, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो रोजगार के अवसर इसमें बहुत हमें मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाते हैं।
1: निश्चित रूप से जो वस्त्र रसायन है, नए अनुसंधानों से आप लोगों ने कुछ कुछ नए रेशों का निर्माण किया है, जैसे आपने सीवीड्स की बात की है, और निश्चित रूप से आजकल सुनते हैं कि जो पराली से भी कोई रेशा निकालने की बातचीत की जा रही है ताकि उसका उपयोग किया जा सके, वो भी कार्य आपके अनुसार चल रहा है। इस सबसे निश्चित है कि एक पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित जो वस्त्र बनने शुरू हो जाएंगे, और इस उद्योग को जितनी मजबूती मिलेगी यह देश को

0: Lakshmi, welcome to the program.
1: Thank you for having me. Yeah.
0: The Cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intrastate movement of food grains and FBS dealers, margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms and just to give another holistic perspective.
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर यू नो टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिमुनरेशन, मेकिंग श्योर दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, एंड बेसिकली ऑल द एम्स टू सी दैट द मनी गोज टू द राइट पीपल। इन टर्म्स ऑफ द स्केल, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical because it affects the last mile, you know, the common man?
1: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented, and annually 500 lakh metric tons of food grains are transported across the country. And this, you know, moves from center to state and within the state to districts. And there are nearly 5,35,000 fair price shops, which we call ration shops, through which the food grains are distributed to 80 crore people. It's not a small number. And managing such a big capacity requires technology, and also people who are operating these fair price shops, they also need some kind of margin or remuneration for them to sustain, considering the kind of inflation we have. So that's the idea, like the support that government gives in assisting these dealers to operate these ration shops efficiently. If they are better remunerated, they will function efficiently. That's been the long-standing demand, that their margins are low and they want it, and this scheme helps them some increase in the remuneration for them. And apart from that, the scheme also talks about technology that is there, and also fair price shop, that support is there. And especially the grievances, you know, the grievances, AI grievances, if anyone has issues regarding PDS distribution or anything, they not got any, their quota of, everything can be addressed. And if it is AI driven, the efficiency of addressing those issues will be faster and smarter.
0: Right. In fact, you're on point absolutely to talk about grievance redressal. The minister has also spoken about this and has also mentioned what is going to be the financial gain due to the use of technology, which now the government is looking forward to reaping. Let's listen to that.
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे।
0: सो लक्ष्मी, इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम, एंड यस, ऑफ

0: سيداتي وسادتي، نقدم الآن برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سبوتلايت نقدمها باللغة الإنجليزية.
1: سبوتلايت. Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaurav Dhawanlal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
2: Thank you for having me. Yeah.
1: The cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intrastate movement of food grains and FBS dealers margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms. And just to give another holistic perspective,
3: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है. आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है. फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम. सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत. दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके

0: discussion should always be there to what extent this technology can be used and misused. So that particular part, the technology government takes care of it, then it will be easy for implementing and taking benefit of the technology.
1: Lakshmi, this is the tech age, and we shall talk about the role of technology in actually, this is a continuation of schemes which have been lauded, in fact, as great food safety measures which India has taken across the world. Mr. Vaishnav has spoken about this also.
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के. सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री. करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी. दूसरा है किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व

0: था मनीष आनंद और ओम प्रकाश का, प्रस्तुति सहयोग था आकाश गौतम और
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न

0: पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रूपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, आज के इस खास दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हुए जिनका नाम साहस, राष्ट्रभक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है। उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना गया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और समाज सुधारक जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंडमान सेलुलर जेल की कठोर यातनाएं हो या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार, वीर सावरकर का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा। उन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता की बात नहीं की बल्कि समाज में फैली भेदभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो आइए उनके विचारों और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी दूर गगन के छांव में। और दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल, आकाशवाणी जब गांव गांव तक पहुंचा, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा रेडियो जो गांव को दुनिया से जोड़ देता था। जब शहरों में खबरें बन रही होती थी, तब आकाशवाणी उन्हें सीधे खेतों तक पहुंचा रही थी। किसान अपने दिन की शुरुआत मौसम के बुलेटिन से करते थे और उसी आधार पर तय होता था कि बीज कब बोना है, फसल कब काटनी है। रेडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता था, यह सही निर्णय लेने की समझ भी देता था। दूर दराज इलाकों में जहां संसाधन सीमित थे, वहीं इसके शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों के लिए चलती फिरती कक्षा बन जाते थे। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह, टीकाकरण की जानकारी और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाते गए। और इसी कड़ी में एक अहम पहल हुई, 17 नवंबर 1959 को रेडियो रूरल फोरम्स की शुरुआत। इन फोरम्स में गांव के लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुनते, फिर उन पर चर्चा करते। कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके और ग्रामीण जीवन से जुड़े मुद्दे इनका केंद्र होते थे। इन चर्चाओं से निकले सवाल और सुझाव आकाशवाणी केंद्रों तक पहुंचते और अगले प्रसारण में उनके जवाब दिए जाते। यानी यह सिर्फ प्रसारण नहीं था, बल्कि दो तरफा संवाद की एक मजबूत कड़ी थी। और जब बात मनोरंजन की आती तो यही रेडियो बन जाता था पूरे गांव का मंच। गीत, नाटक, लोक संगीत, हर आवाज में अपनी मिट्टी की खुशबू। आपातकाल हो, युद्ध हो या हो प्राकृतिक आपदा, आकाशवाणी ने हमेशा सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचाई। आज भले ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन जो विश्वास रेडियो ने बनाया वो आज भी कायम है, चाहे वो गाँव हो या शहर।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म थी प्रोफेसर।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और अब हम बात करेंगे एक ऐसी असाधारण महान भारतीय वैज्ञानिक की जिनकी मेहनत ने पूरे देश की जिंदगी में मिठास घोल दी, डॉक्टर जानकी अम्बाल की। वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। एक ऐसा समय जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और शोध के रास्ते लगभग बंद थे, उस दौर में उन्होंने न सिर्फ ये मुकाम हासिल किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। उन्होंने साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में गहन शोध किया और इसी शोध ने भारत को एक बड़ी सौगात दी। डॉक्टर जानकी अम्बाल ने गन्ने की एक ऐसी किस्म विकसित की, उसमें बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अधिक मीठी थी और जिनकी उपज भी बेहतर थी। उनकी इस खोज ने भारत की आयात पर निर्भरता को खत्म करने में मदद की, लेकिन उनका योगदान सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं था। उन्होंने बैगन और मैग्नोलिया जैसे पौधे की भी बेहतर और अधिक उपयोगी किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिससे खेती के साथ साथ सजावटी पौधों को दुनिया को नई पहचान मिली। सोचिए, हमारी चाय की हर चुस्की में, हर मिठाई के स्वाद में और खेतों की हर हरियाली में, बगीचों की खूबसूरती में उनकी मेहनत और समर्पण शामिल है। वो विदेश गई, वहाँ अपने शोध को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया और अपनी विरासत को सचमुच चीनी के हर दाने में छोड़ गई। उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे देश की अग्रणी वनस्पति वैज्ञानिकों में शामिल हुई। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ पौधों का रूप बदला बल्कि देश की दिशा भी बदली। डॉक्टर जानकी अम्बाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और ज्ञान की शक्ति से एक व्यक्ति पूरे देश में बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी में थोड़ी सी मिठास महसूस हो, याद रखिएगा उसमें एक भारतीय महिला वैज्ञानिक का सपना भी घुला है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म खट्टा मीठा से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और दोस्तों, किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी आईना बनती हैं तो कभी सहारा। तो आज बात तीन ऐसी ही खूबसूरत किताबों की जो दिल और सोच दोनों को छू जाती है। तो पहली किताब है अक्टूबर जंक्शन, लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। यह कहानी है उन रिश्तों की जो सही वक्त पर पूरे नहीं हो पाते। प्यार, दूरी और अधूरी मुलाकातों के बीच चलती ये कहानी बहुत ही सादगी से दिल को छू जाती है और ये हमें सिखाती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें बस थोड़ा सा बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। दूसरी किताब है मुझे चांद चाहिए, लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। यह एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों और पहचान के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। यह उपन्यास सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि एक स्त्री की इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय लेने की गहरी पड़ताल है। और यह किताब हमें सिखाती है कि सपने देखना जितना ज़रूरी है, उन्हें पाने की कीमत और जिम्मेदारी समझना भी उतना ही ज़रूरी है।

तीसरी किताब है आपका बंटी, लेखिका है मन्नू भंडारी। एक छोटे बच्चे की नज़र से देखा गया टूटता हुआ परिवार, बंटी की मासूमियत और दर्द रिश्तों की सच्चाई को बेहद गहराई से सामने लाता है। और यह किताब हमें सिखाती है कि बड़े लोगों के फैसले जो होते हैं अक्सर बच्चों के मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो कभी प्यार अधूरा रह जाता है, कभी सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है और कभी रिश्तों की दरारें मासूम दिल को छू जाती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो सिर्फ वक्त ना बिताए बल्कि आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और संवेदनशील बना दे, तो ये तीन किताबें आपके लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है। आज ईद उल अजा यानी बकरीद के इस पाक मौके पर आप सभी श्रोताओं को ढेरों ढेरों मुबारकबाद। दुआ है कि आपके जीवन में खुशियाँ, अमन और बरकत हमेशा बनी रहे।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी बरसात की रात। और दोस्तों, बंगाल की मिट्टी से जन्मी कांथा कला समय से परे एक ऐसी परंपरा है जहां पुराने साड़ियां, धोतियां और कपड़े फेंके नहीं जाते बल्कि सहेजे जाते हैं। इन कपड़ों की कई परतों को एक साथ रखकर साधारण रनिंग स्टिच से सिला जाता है और यूं बनती हैं खूबसूरत रजाइयां, दुपट्टे और कपड़े, जो सिर्फ वस्त्र नहीं भावनाओं का ताना बाना होता है। और कहते हैं कि इस कला की जड़ें बहुत पुरानी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध के अनुयायी भी त्यागे हुए कपड़ों को सिलकर अपने

दैनिक उपयोग में लाते थे, यानी सादगी और पुनः उपयोग की यह परंपरा सदियों पुरानी है। और समय के साथ इस कला में केवल टांके नहीं लगे, कहानियां भी जुड़ती गईं। पौराणिक कथाएं, कमल के फूल और तरह तरह के फ्लोरल और ज्यामितीय पैटर्न धीरे धीरे एक कपड़े पर पूरी एक कहानी, एक इतिहास, एक संस्कृति उभारने लगी। समय के साथ यह कला धीरे धीरे खोने लगी थी, लेकिन 1940 के दशक में प्रतिमा देवी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थी, उन्होंने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। उनके प्रयासों ने कांथा को नई पहचान दी और इसे घरों से निकालकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। इन डिजाइनों में सबसे खास होता है एक सतदल पद्म, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, जो जीवन, सृष्टि और नारित्व का प्रतीक माना जाता है। हर टांका जैसे इस प्रतीक में एक नई ऊर्जा, एक नई भावना भर देता है। आज नक्शी कांथा को GI टैग भी मिल चुका है, जो इसकी विशिष्टता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रमाण है। यह सिर्फ कढ़ाई नहीं, यह बंगाल के महिलाओं की आवाज़ है, उनके यादें, उनके सपने और उनकी रचनात्मकता का जीवंत दस्तावेज। कांथा हमें सिखाती है कि जो पुराना है वो बेकार नहीं होता, कभी कभी वही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाता है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का रहेगा इंतज़ार।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी चोर मचाए शोर। और अब बात करते हैं कि ऐसे ट्रेंड की जो धीरे धीरे हमारे सबसे निजी खुशियों को भी कंटेंट में बदल रहा है। जी हाँ, बात हो रही है शादियों की। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं होती, ये वो पल होता है जहाँ दो लोग, दो परिवार और अनगिनत भावनाएं एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन आजकल ये पल कैमरे के एंगल, रील के ट्रांजिशन और परफेक्ट शॉट के बीच में कहीं खो सा गया है। अब दुल्हा दुल्हन की एंट्री भी दिल से नहीं, रीटेक से होती है। हंसी भी असली नहीं, कैमरा ऑन है, स्माइल प्लीज वाली हो गई है। सोचिए, क्या हर आंसू, हर मुस्कान, हर रस्म सिर्फ इसलिए है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छी लगे? कभी कभी हम भूल जाते हैं कि शादी लाइव जीने के लिए होती है, ना कि बाद में अपलोड करने के लिए। जब माँ की आंखों में आंसू हो तो वो पल कैमरे में कैद करने से ज़्यादा उसे महसूस करना ज़रूरी है। जब दोस्त मजाक कर रहे हों तो उस हंसी में शामिल होना ज़रूरी है, ना कि बस उसे रिकॉर्ड करना। कंटेंट बनाना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन जब कंटेंट असल पल से बड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं हम कुछ खो रहे होते हैं। याद रखिए, शादी की सबसे खूबसूरत यादें वो होती हैं जो दिल में रहती हैं, ना कि सिर्फ फ़ोन की गैलरी में। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं, थोड़ा कैमरा नीचे रखिए और उस पल को पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि कुछ लम्हे पोस्ट करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सुहाग से। और अब हम बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जो शोर नहीं करती लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देती है, साइलेंट हेल्थ इश्यूज, जो बिना स्पष्ट संकेत दिए शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तेज़ दर्द ना हो या कोई बड़ी तकलीफ ना दिखे तब तक सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई शारीरिक और मानसिक समस्याएँ चुपचाप पनपती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायरॉयड या विटामिन की कमी, इनमें शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं या नज़र ही नहीं आते। तो ध्यान देने वाले संकेत ये है कि लगातार थकान या कमजोरी, अचानक वजन बढ़ना या घटना, बार बार सर दर्द, नींद का बिगड़ना, त्वचा या बालों में बदलाव, ये छोटे छोटे संकेत है कि आपके शरीर का संदेश हो सकता है कि मेंटल साइलेंट हेल्थ इश्यूज़। अब बात करते हैं मन की, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये भी अक्सर चुपचाप हमारी ज़िंदगी में जगह बना लेते हैं। तो पहचान कैसे करें? बिना वजह उदासी या खालीपन महसूस होना, पहले जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती थी उनमें रुचि का कम होना, नींद या भूख में बदलाव। तो क्या करें? अपने शरीर और मन के छोटे छोटे बदलावों को नज़रअंदाज ना करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं, और सबसे ज़रूरी, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा ज़रूर करें। याद रखिए, बीमारियां हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से भी दस्तक देती है। उन्हें सुनना, समझना और समय पर कदम उठाना ही समझदारी है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी से। और दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी की परफेक्ट छुट्टियां, किसी की फिट बॉडी, किसी की शानदार नौकरी, तो किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर अनजाने में हम अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक हाईलाइट है? असल जिंदगी में हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे असफलताएं, और हर परफेक्ट फोटो के पीछे कई बार अधूरी कहानियां। सोशल मीडिया हमें जोड़ता भी है, लेकिन कई बार ये हमें खुद से ही दूर कर देता है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है, अपनी कहानी होती है। तुलना करने से ना हमारी राह आसान होती है और ना ही हम खुश रह पाते हैं। थोड़ा रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जी रहा हूँ या जी रही हूँ? सोशल मीडिया को देखिए, लेकिन उसे अपनी सच्चाई मत बनाइए, क्योंकि असली ज़िंदगी फिल्टर के पीछे नहीं, आपके आज में बसती है। याद रखिए, तुलना का ये जाल जितना चमकदार दिखता है उतना ही उलझाने वाला भी है। इससे बाहर निकलना है तो खुद को अपनाइए और एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। दूसरों की रोशनी में खुद को मत तौलिए। आपकी अपनी एक चमक है, बस उसे पहचानिए। नवीन भाटिया जी और गौरी शंकर जी, आपने मेल भेजा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।

अभी हम सुन रहे हैं पंकज उदास और साधना सरगम को, फिल्म है मोहरा। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं देते हैं विराम। मुस्कुराते रहिए, घर आंगन सुनते रहिए, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए

0: और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है, ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं अर्चना गोयल, आप सभी का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने रहस्य और सस्पेंस को एक नया अंदाज दिया। एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं और जिसका डर, रोमांच और रहस्य आज भी वैसा ही ताज़ा लगता है। जी हाँ, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है 1965 की मशहूर फिल्म गुमनाम से। तो आइए सुनते हैं इस गीत का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण किया था एनन सिप्पी ने और फिल्म के निर्देशक रहे राजा नवाठे। 24 दिसंबर 1965 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म में मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, नंदा, महमूद, प्राण, हिलन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमल और मनमोहन। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वर नन से प्रेरित थी, लेकिन खास बात ये रही कि फिल्म को पूरी तरह भारतीय रंग में ढाला गया। गीत, संगीत, हास्य, रोमांस और रहस्य सब कुछ

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है गुमनाम। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। दोस्तों, गुमनाम फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें एक प्रतियोगिता जीतने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनका विमान रास्ता बदल देता है और वो पहुंच जाते हैं एक सुनसान द्वीप पर, जहां पर एक रहस्यमयी हवेली उनका इंतज़ार कर रही होती है। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बनकर आता है कि कातिल कौन है। फिल्म की यही बात दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। उस दौर में इतनी रहस्यमयी कहानी बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती थी। और अब बात करते हैं फिल्म के सबसे दिलचस्प किरदार की, यानी महमूद साहब की। फिल्म में उनका बटलर वाला किरदार डर और कॉमेडी दोनों साथ लेकर आता है। उनकी अजीब हरकतें और संवाद दर्शकों को हंसाते भी हैं और शक में भी डालते हैं। उनका गाना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं आज भी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

दोस्तों, अगर गुमनाम की बात हो रही हो और जान पहचान हो का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जान पहचान हो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय डांस नंबरों में गिना जाता है। इस गाने में हेलेन का डांस इतना मशहूर हुआ कि सालों बाद हॉलीवुड फिल्म गोस्ट वॉक वर्ल्ड में भी इस गीत का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने दिया था। उस दौर में ज़्यादातर फिल्मों में परिवार, प्रेम और सामाजिक कहानियाँ दिखाई जाती थीं, लेकिन गुमनाम में सस्पेंस और हॉरर का नया रास्ता खोला। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रहस्यमय माहौल बनाने के लिए सेट पर रोशनी और ध्वनि का खास ध्यान रखा जाता था, ताकि कलाकार भी उस डर को महसूस कर सके। फिल्म रिलीज होने के बाद लोग इंटरवल तक कातिल का अंदाज लगाते रहते थे, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते कहानी ऐसा मोड़ लेती थी कि दर्शक हैरान रह जाते थे। मनोज कुमार ने फिल्म में गंभीर और समझदार किरदार निभाया। बाद में वे भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। नंदा की मासूमियत और अभिनय ने फिल्म को भावनात्मक गहराई दी और प्राण साहब हर फिल्म की तरह यहाँ भी रहस्य पैदा करते नजर आए।

और दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने अपने मेल्स में कार्यक्रम के बारे में कुछ कहा है, तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ। और ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। और ये मैसेज हमें भेजा है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने, और इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत भूषण, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, ग्राम पंचायत कालेगांव, जाफराबाद से। आप हैं अनारकली बाज़ार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। और ये लिख रहे हैं कि आज गुमनाम के गीत और कहानी सुन रहे हैं, फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी, इस फिल्म की कहानी और गीत सुनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को बड़े दिल से सुन रहे हैं। आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, दीदी गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता। गांव नथर पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, जिला हिसार से। और ये हैं सुरसंगम रेडियो श्रोता संघ से, इन्होंने पूरी जानकारी फिल्म के बारे में दी है। आप हैं विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और परवीन सुल्ताना, जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से, गांव नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साधु। और आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से। और ये मैसेज आप हमारे पास पहुंचा है डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया का। आपके साथ हैं तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल

डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का। संजय झिंगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन, और नलिकेश्वर नगर नरवेल महाराज से पी एस नवाडकर, निर्मला नवाडकर और सोपान ताइड़े और नारायण इंगले। स्वर्ण सिंह गिल गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, गुमनाम उस दौर की सफल फिल्मों में गिनी गई और आज भी इस हिंदी सिनेमा की बेहतरीन सस्पेंस फिल्मों में शामिल किया जाता है। इसके रहस्य संगीत और कलाकारों ने इसे अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म की जिसमें रहस्य और संगीत की मिलाकर हिंदी सिनेमा को एक नया नाम दिया। गुमनाम आज भी जब इसका संगीत बजता है तो या टीवी पर दिखाई जाती है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, नए किस्सों और नई यादों के साथ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: फौजी वीरां लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तहत ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स

0: पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की तीसरी रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज अवाम और खासतौर पर ख्वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधही और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज्म जब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ़ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज़ है। इस दौरान सिक्किम को बाजाबता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। यह ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के ज़रिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेज़ी लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवेज़, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निज़ाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तावुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमलावरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम एक तरक्की पसंद वसीला है जिसका मकसद ज़्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निज़ाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तहान के लिए अजसर नौ जाँच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ़ ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अजसर नौ जाँच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि उहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल ज़रूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदही को बरकरार रखा जाए।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ।

0: से ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर के वजीर एच के पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि डी के शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नज़दीक अमरीकी फ़ौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निज़ाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नज़दीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी ज़िला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। DGP राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये त्यौहार पुरअम तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोक भवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और

0: चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के

0: खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसकी मासूमियत, चुलबुलापन और खूबसूरत मुस्कान ने 1970 और 80 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में मासूमियत थी, अभिनय में सादगी और मुस्कान में अपनापन। जी हाँ, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को।

बिंदिया गोस्वामी का जन्म 4 जनवरी 1962 को हुआ। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। कहते हैं कि बिंदिया की खूबसूरती और कैमरे के सामने उनकी सहजता ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया था। महज किशोर उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और देखते देखते वे 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। बिंदिया गोस्वामी ने उस दौर में काम किया जब हिंदी फिल्मों में रोमांस, पारिवारिक कहानियां और संगीत का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। उनकी जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ पसंद की गई। उन्होंने विनोद मेहरा, शशि कपूर, जितेंद्र और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उनकी अदाकारी में एक घरेलू अपनापन था जिसकी वजह से दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे।

दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि बिंदुआ गोस्वामी ने बहुत कम समय में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन जितनी जल्दी वो फिल्मों में आई उतनी ही जल्दी उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बना ली। कई लोग मानते हैं कि अगर वो लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहती तो वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती। उनका निजी जीवन भी काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने अभिनेता विनोद मेहरा से विवाह किया था, हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता से शादी की। जेपी दत्ता

वही निर्देशक हैं जिन्होंने बॉर्डर और एलओसी करगिल जैसी बड़ी फिल्में बनाईं। शादी के बाद बिंदिया ने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से दूरी बना ली।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। और ये हमें मैसेज भेजा है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता ने, और ये लिख रहे हैं कि उत्तम बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

बात गाने जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। आप हैं नाहर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। और आप हैं इंद्रभान सिंह, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है,

एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार जी हमें अपना संदेश भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विंध्या गोस्वामी के ऊपर ये इन्होंने अपनी बता रहे हैं कि अगर आप चर्चा कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर लोकप्रिय खूबसूरत अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी और उनकी पहली फिल्म जीवन ज्योति की और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। गोलमाल, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, दादा, उन्होंने 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर में जगह बनाई और विनोद मेहरा से पहली शादी की। वो ज़्यादा दिन नहीं टिकी और दूसरी शादी उन्होंने निर्देशक जेपी दत्ता से की और कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। तो आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से अपना मैसेज हमें भेज रहे हैं। फारूक अली खान ने भी हमें अपना मैसेज भेजा है। हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापारा से अपना संदेश भेज रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजबीर सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, बॉबी डॉली, बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक और मधु नायक। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी शिद्दत से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। और अब सुनते हैं एक बहुत

बिंदिया गोस्वामी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सहजता। वे बिना किसी बनावटी बन के अभिनय करती थी। उनकी मुस्कान और मासूम चेहरा दर्शकों को बहुत आकर्षित कर लेता था। वे उन अभिनेत्रियों में शामिल रही जिन्होंने ग्लैमर के साथ साथ सादगी को भी पर्दे पर खूबसूरती से निभाया। दोस्तों, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए बेहद खास था और उस दौर में कहानियों में परिवार का रिश्तों की मिठास थी और गीतों में दिल की भावनाएं। बिंदिया उसी दौर की प्रतिनिधि अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर मासूमियत थी और अभिनय में सच्चाई। यही वजह है कि आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि बिंदिया गोस्वामी फैशन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में भी रुचि रखती हैं। हिंदी फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपने परिवार और रचनात्मक जीवन को समय दिया। हालांकि वे लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें कभी नहीं भुलाया।

तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की उस मासूम और खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसने कम समय में ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। कुछ कलाकार अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपनी सादगी और मुस्कान से याद रह जाते हैं, और बिंदिया गोस्वामी उन्हीं कलाकारों में से एक है। अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी हस्ती और नए किस्सों के साथ। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर

0: फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
1: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, इसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
1: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
1: जी, चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओ इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि

0: एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
1: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
1: ऐसे नहीं,
3: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
0: हाँ माँ।
4: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
4: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा। अच्छा। रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
5: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
6: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
5: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
6: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
5: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
6: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
5: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
6: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
7: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
8: जी साहब, जी साहब।
7: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।

0: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगीं और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।

0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंदुप्रस्थ चैनल है। 3:30 होने को हैं। अब पेश है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: आप में ये देखा कि रब्बुल इज्जत हुक्म फरमा रहा है कि वो अपने लख्त जिगर नूरे नज़र सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके फर्जंद अर्जमंद हैं उनकी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी थोड़ी मंजूर थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जज्बा कि वो अपनी औलाद के ऊपर भी अपने मालिक की चाहत और ख्वाहिश और हुक्म को बसरो चश्म कबूल करते हैं, ये मलका, ये कुव्वत, ये ताकत अल्लाह को देनी और देखनी मकसूद थी कि ये हमारे इस इम्तिहान में कामयाब होता है या नहीं। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि एक शब देखा, दूसरी शब देखा और तीसरी शब उन्हें यकीन कामिल हो गया कि ये मेरे रब का हुक्म है, अब मुझे इस पर अमल करना है। चुनाचे इस ख्वाब की अमली ताबीर के लिए उन्होंने अपने साथ अपने फर्जंद अर्जमन नूर नज़र लख्त जिगर सैदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और मीना की वादी में पहुंच गए और अपने बेटे को अपने ख्वाब की बाबत बताया। वो होनहार पूत सपूत जब उन्होंने अपने वालिद की जबानी ये ख्वाब सुना तो फौरन वो भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको आपके और हमारे रब ने हुक्म दिया है आप इसको पूरा करें। ये नमूना था कयामत तक के लिए कि कोई औलाद अपनी माँ बाप के हुक्म की नाफरमानी ना करे किसी हद तक भी। हर अमल जो पॉसिबल है अपने माँ बाप की फरमाबरदारी औलाद के लिए होना चाहिए। इस वाकये से, इस ईद से ये पैगाम मिलता है। तमाम इंसानों के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि उनके ऊपर सबसे बड़ा हक, सबसे बड़ा उनके ऊपर जो हुक्म है वो उनके रब का है, उनके पैदा करने वाले का है और उसके बाद उनके माँ बाप का है। माँ बाप के हुक्म को बजा लाना है। और फिर अल्लाह को ये अदा अपने पैगंबर की इतनी पसंद आई कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मीना की उसी वादी में वो उस रस्म मोहब्बत को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानी की यादगार थी उसको अमली शक्ल में आपने पेश फरमाया और दुनिया को दिखाया कि वही जज्बा सब इंसानों के अंदर होना चाहिए। और कुर्बानी दर हकीकत उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती, बल्कि हम ये इजहार करते हैं कि हमारे दिल में अपने खालिक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मौजूद है। सब धर्मों में कहीं अलग अलग नामों से कुर्बानी का तसव्वुर रहा है। जब रिलीजन स्टडी की जाती है, मज़ाहिब का मुताला किया जाता है तो पता चलता है कि कुर्बानी का जज्बा और कुर्बानी की रस्म रस्म मोहब्बत जो है ये सब धर्मों में है। और इसका ख़ास मकसद ये है कि समाजी रिश्ते सबसे ज़्यादा मजबूत हों, आपस में उल्फत और मोहब्बत, इसार और कुर्बानी के जज्बात पाए जाएं। ये फरमाया गया है कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे जज्बात मोहब्बत पहुँचते हैं, जज्बात एहतराम पहुँचते हैं कि हम अपने रब के लिए और उसके बंदों के लिए और उसकी मखलूक के लिए किस तरह जज्बे फनाइत, जज्बे कुर्बानी, जज्बे इसार रखते हैं। समाज में सबसे ज़्यादा मजबूत बुनियाद कहाँ से शुरू होती है कि औलादें अपने माँ बाप की फरमाबरदार हों। और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है बड़े और छोटे का, और फिर घर से शुरू होता है, फिर पड़ोस में आता है, फिर पड़ोस से शुरू होकर एक मोहल्ले में आता है और मोहल्ले से शुरू होकर पूरा शहर बनता है और शहरों से फिर पूरा मुल्क बनता है। इसी तरह से एक अच्छे समाज में कुर्बानी का होना, कुर्बानी के जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी मेहनत और मशक्क़तों से और कुर्बानी के जज्बात से ही ये आज़ादी की नेमत पाई है कि आज हम सब लोग, सब भारतीय लोग एक मोहब्बत के साथ, अमन व आश्ती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। अहले वतन ने मिलकर कुर्बानियाँ दी। अगर कुर्बानी के ये जज्बात ना होते, ये कुर्बानी की रस्में जो मज़ाहिब में पाई जाती हैं ये ना होती तो फिर हम आज आज़ादी की सांस नहीं ले सकते थे। तो सामईन, ये ईद उल अज़हा हम सब के लिए, हम सब के सारे अहले वतन के लिए एक खुशी का, एक मोहब्बत का, एक आपस में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का पैगाम लाई है।
1: ईद उल अज़हा और समाजी पहलू, अभी आप इस मौजू पर जनाब محیب اللہ.

रुचि होती थी सुनने, और आज भी हम रेडियो सुनते हैं, हमारे पास में रेडियो है भी। सबसे ज्यादा तो फोन इन प्रोग्राम अच्छे लगते थे, और आपके भी जो तो मजलिस प्रोग्राम बड़ा अच्छा, बहुत हमने सुना काफी टाइम से हम जुड़े हुए, 10-12 साल हो गया शायद, मेरे को ज्यादा हो गया, और सारे गजल वगैरह ये नजम गजल का प्रोग्राम शेर शायरी पे आधारित थी, तो अच्छे लगते थे। फोन इन में हमारे जो हमारे मित्र थे जो रेडियो से जुड़े, उनके सबके फोन कॉल आती थी और उनकी अलग अलग फरमाइश होती थी, और

0: 12 साल की उम्र के जब हम थे तभी से हम रेडियो सुन रहे हैं, 1988 से कंटिन्यू मैं रेडियो सुन रहा हूँ। और बड़ा अच्छा लगता था जब हम छोटे छोटे थे और घरों में रेडियो बजता था, घर घर में बल्कि रेडियो बजता था, सिर्फ हमारे घर में नहीं, हमारे घर में हमारे वालिद साहब रेडियो सुनते थे, फूफा जान रेडियो सुनते थे और हमसे चचा जान रेडियो सुनते थे। और बड़ा अच्छा लगता है रेडियो में पुरानी बातें, पुरानी नगमे, पुरानी गजलें और खबरें, बच्चा भी सुन ले, बूढ़ा भी सुन ले, जवान भी सुन ले, इसमें गीत भी है, गजल भी है, कव्वाली भी है और खबरें भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी है कि रेडियो बजा के छोड़ दीजिए और आप काम भी कर रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं। टेलीविजन में ऐसी बातें नहीं, टीवी अगर चल रहा है तो उसकी तरफ निगाह गाड़ के देखते रहिए, लेकिन रेडियो बजा के छोड़ दिया, रेडियो ही बज रहा है, काम भी हो रहा है। और अब जब मैं ये सब देखता हूँ ना, मोबाइल, इंटरनेट, तो मुझे वो रेडियो की पुरानी बातें याद करके परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है कि तुझसे अब और कुछ नहीं चाहिए मेरी उम्र रवा, मुझे मेरा बचपन, मेरी जुगनू, मेरी बुढ़िया ला दे, नया मौसम मेरी आंखों की बिनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आंखों को फिर वही ख्वाब पुराना ला दे। उर्दू मजलिस तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ही मियारी और मालूमती प्रोग्राम होते हैं और मेरी शख्सियत में बहुत निखार आया इस प्रोग्राम को सुन करके। और आज भी मैं सुनता हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उर्दू मजलिस का फोन इन प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग होता था उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग फिर से शुरू कर दें।
1: मैं राम निवास अग्रवाल बोल रहा हूँ भिवानी हरियाणा से। रेडियो तो मैंने तो 15-20 साल का था, मैं तभी से मैं रेडियो से जुड़ गया था और रेडियो ने मेरी जिंदगी पर काफी असर डाला। मुझे बोलने का भी पता चला कैसे बोला जाता है, कैसे बात की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत जानकारियां रेडियो से मिली और नए नए दोस्त बने रेडियो के जरिए। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा रेडियो का ये सफर। उर्दू मजलिस से मैं जुड़ा था 2014-15 में। किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि उर्दू मजलिस प्रोग्राम आता है आकाशवाणी दिल्ली से, राजधानी चैनल से, तो मैंने वहां लगाया। तो मैंने पहली बार जब उर्दू मजलिस प्रोग्राम सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू मजलिस फोन इन प्रोग्राम तो जरूर से शुरू किया जाए ताकि हम जो श्रोता एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे की आवाज सुनते थे, आज उन लोगों की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। फोन इन प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए।
2: मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल। रेडियो के बारे में तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है जी, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है जब ससुराल में भी रेडियो लेके जाते थे लोग, और बचपन में घर में रेडियो था नहीं, इधर उधर एक ही रेडियो कई लोग बैठ के सुना करते थे। 1987 में मेरे ससुराल वालों ने रेडियो दियो, बीच में टूट गया उसका खामियाजा, मुझे मानसिक बीमारी के रूप में, और कोई आश्चर्य नहीं कि आपका मैं हत्या तक भी कर लेता अगर रेडियो ने साथ दिया होता, क्योंकि इसमें ठहराव, सुकून बहुत कुछ है जी। ध्यान से सुने से फिल्मी गीत है या और कोई भी चीज है, उनमें एक बहुत शिक्षा मिलती है। और इटली निवासी मार्कोनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने संसार को रेडियो दिया है। उर्दू मजलिस 7:45 में सुनिया करता जी शाम को, तो मैंने शुरू में सुनिया और सामयिन शब्द बोलते थे, समझ में नहीं आता था भी श्रोता को बोलते है, पूछा हमारी रिकॉर्डिंग की समझ से 2015-2020 तक का इतना बढ़िया समय था जी, वो समय भूल नहीं सकते जी। कोरोना के बाद सब कुछ कारवां भी छट गया जी, प्रोग्राम से अपने दिल की बातें कह देते थे जी। प्रोग्राम तो सभी अच्छे है, लेकिन एक प्रोग्राम मैं कभी नहीं भूल सकता जी, आकाशवाणी रोहतक से प्रोग्राम आ रहा था सोच विद्राट के, वो पूछ रहे थे कि रेडियो ने क्या योगदान दिया। मैंने अपनी घटना के बारे में बता दिया, रोने लग गया था। आशे जो कोई अनाउंसर थे नोबली राजू जी, जीवन में तकलीफ भी जरूरी है, रेडियो हमेशा आपके साथ रहेगा, श्रोताओं के जो मेरा परिवार है उन्हीं के नंबर है।
3: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमने तो बचपन से ही, जब हमारे को होश आया तो हमारे घर रेडियो चलता था, आकाशवाणी चलती थी। उस समय हमें इतना समझ नहीं थी क्या आता है, उस समय एक ही चैनल हुआ करता था तो जो चलता है उसी को सुनते रहते थे। और फिर थोड़े से बड़े हुए तो फिर क्रिकेट कमेंट्री, हॉकी की कमेंट्री ये सब सुनने लगे। फिर 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड की कमेंट्री आती थी वो सुनते थे। आकाशवाणी से आज की तारीख तक हम जो सुनते आ रहे हैं बेहतरीन कार्यक्रम आते हैं, सुनने को, उससे क्या है हमारे को ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और नए नए लोगों से नई नई

0: जाती है, कृषि से लेकर स्पेस तक की जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं रेडियो में, ये सारी चीजें आकाशवाणी का ही जरिया था जिससे हम ये सब सुनते हैं। और जन्म गुट्टी बोलते थे जब बच्चे को खिलाई जाती थी, ऐसे ही ये हमारा गुरु है आकाशवाणी केंद्र। 90 साल होने पर इसको हम बधाई देते हैं और आने वाले जब इसकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी 1936 में और ज्यादा उठाएंगे।
1: सामईन, अभी कुछ सामईन के ख्यालात आप सुन रहे थे, आइए अब सुनते हैं ये ईद का नगमा।

ईद का नगमा आपने सुना। एक बार फिर ईद उल अज़हा की तमाम उर्दू मजलिस के अराकीन की जानिब से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सामईन, ये था हमारा आज का ईद उल अज़हा पर खुसूसी प्रोग्राम, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: 川印度电台广播电台，现在我们播送全印度电台昨天播出的英语节目 Spotlight 的节选部分。
1: Spotlight。Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaurav Dhawanlal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
2: Thank you for having me. Yeah.
1: The cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intra-state movement of food grains and FBS dealers margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms. And just to give another holistic perspective,
3: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है. आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है. फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम. सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत. दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
1: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर, यू नो, टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिम्यूनरेशन, मेकिंग श्योर दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, एंड बेसिकली ऑल द एम्स टू सी दैट द मनी गोज टू द राइट पीपल. इन टर्म्स ऑफ द स्केल, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical because it affects the last mile, you know, the common man?
2: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented, and annually 500 lakh metric tons

0: खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी को आज धर्मेंद्र और
3: आलोक का नमस्कार।
2: नमस्कार आलोक। और आलोक, खेलों की बात करें तो बहुत सारी खेल गतिविधियां दुनिया भर में चल रही हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभागिता लगातार दिखाई दे रही है, लगातार प्रदर्शन भी निखर कर सामने आ रहा है। तो चंद्रालोक, आज शुरुआत करते हैं शूटिंग से।
3: जी सर।
2: 21 साल की यंग शूटर ईशा सिंह ने एकाग्रता वाले इस गेम में मजबूत भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ISSF वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में न सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम अंकित करवा लिया। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस प्रतियोगिता में ईशा ने दुनिया की दिग्गज निशानेबाजों के बीच से निकलकर इतिहास रच दिया। इस भारतीय निशानेबाज ने फाइनल में 50 में से 43 अंक हासिल किए। ये स्कोर सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में नया विश्व रिकॉर्ड है। ईशा सिंह का यह शूटिंग पदक ISSF वर्ल्ड कप 2026 सीजन में भारत का राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में पहला व्यक्तिगत पदक भी है। इस स्वर्ण पदक के साथ ईशा ने दिसंबर में इटली के रोम में होने वाले सीजन एंडिंग ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद ईशा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
4: Munich meant a lot to me. I think everyone in this sport knows the kind of competition that goes on here. I mean, at least in pistol, it's very, very tough. I'm even getting into the top 8 is quite tight. And I really badly wanted to win this one because it's my third time here and last time I didn't even make it to the final, though it was the same score for the top 8. But I think I'm very grateful. I loved the experience. I didn't really expect this good shooting to happen, but I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best. And at this one series, I think I was just getting ready to hear the ready command to load, and I could see my left hand shaking really bad. I was like, oh, okay, I'm a little too much. So I tried to like just breathing and like calm myself down, but I had a lot of nerves. But that's the thing, I think in our sport, you can't escape that. You have to face it and just embrace that feeling because that is what we call experience, and you should be grateful that you're feeling it, and you can note down if you ever felt like you have to work on something. So
2: Germany ki Doreen Wenningkamp ne 50 mein se 38 nishane ke sath rajat padak jeeta, jabki Bulgaria ki Miroslava Minveva ne kaansya padak apne naam kiya. Paris 2024 Olympic swarna padak vijeta Yang Ji qualification mein sheersh par rehne ke bavajood final mein 5vein sthan par rahi. Wahin Bharat ke star nishanebaz Manu Bhakar final mein jagah banane se chook gayi. इसी स्पर्धा में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीतने

0: वाली राही सरनोबत भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। भारत की अर्शदीप कौर और तेजस्विनी ने रैंकिंग पॉइंट्स ओनली कैटेगरी में हिस्सा लिया। अर्शदीप 44वें और तेजस्विनी 51वें स्थान पर रहीं। इस तरह राइफल, पिस्टल और शॉटगन विश्व कप स्पर्धाओं में यह इस सीजन भारत का तीसरा पदक रहा। इससे पहले स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित राइफल पिस्टल विश्व कप में मुकेश निलावल्ली और पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित शॉटगन विश्व कप में बिवान कपूर और नीरू ढांडा ने मिक्स टीम ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस साल की शुरुआत में ईशा सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसी प्रतियोगिता से अभी अभी ये खबर आ रही है कि साक्षी पाडेकर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 635.1 का स्कोर किया, जबकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की चैंपियन इला वेनिल क्लारिवन 19वें और आर्या बोर से 63वें स्थान पर रही। अब उम्मीद करते हैं इस इवेंट में भी एक पदक की। और शूटिंग के बाद अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले शबाब पर हैं। और कल जो मुकाबला हुआ है, अगर हम बात करते हैं कल के क्वालिफायर मुकाबले की, तो जो मुकाबला खेला गया उसमें एक बार फिर से बल्ला चमका है वैभव सूर्यवंशी का। चलते हैं आईपीएल की तरफ। इसे सूर्यवंशी की सुनामी कहें, तूफान कहें या फिर भूचाल, आपका जो दिल करे कहिए, लेकिन सच यही है कि चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में 15 साल के बिहारी बालक वैभव के बवंडर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का सब कुछ तबाह हो गया। क्रिकेट जगत की इस युवा सनसनी के सामने बेहद अनुभवी कप्तान पैट कमिंस लाचार दिखे तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज बेबस। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और वैभव अपने शहर समस्तीपुर से होकर गुजरने वाली उस अल्हड़ कोसी नदी की तरह हर बाधा को तोड़कर अपनी रौ में बहे जा रहे हैं। कोसी के वेग और तेज वाले मिजाज का एहसास उनकी पूरी पारी के दौरान दिखा। आईपीएल 2026 के इस एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हार का मतलब आईपीएल के इस एडिशन में सफर की समाप्ति थी। ऐसे में टॉस हैदराबाद के कप्तान कमिंस ने जीता और बिना वक्त गवाए गेंदबाजी का फैसला ले लिया। टॉस हारने की निराशा राजस्थान के कप्तान रियान पराग के चेहरे पर भी दिखी, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच पर वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। लेकिन रियान की निराशा कुछ ही पल में आशा में बदल गई, क्योंकि शुरुआती कुछ गेंदों की खामोशी के बाद वैभव नाम का सूर्य पूरी प्रखरता के साथ अपने बल्ले की चमक बिखेरने लगा था। वैभव के बल्ले से रन निकलते गए और रनों का पहाड़ खड़ा होता रहा। इस दौरान कई रिकॉर्ड सहज अंदाज में बनते चले गए, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन जब 29 गेंदों में 97 रन पर जाकर वैभव की पारी थमी तो क्रिकेट का चाहने वाला हर चेहरा निराश था। प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर जब रविचंद्रन स्मरण ने उनका कैच लपका तो पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। वैभव के पैर जैसे मन मन भर भारी हो गए। वह मैदान से बाहर जाने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थे। लेकिन जो भी हो, एक बार फिर उनकी बेखौफ पारी ने राजस्थान की मजबूत बुनियाद रख दी। सूर्यवंशी ने हमेशा की तरह कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था और वे अपने अंदाज में खेलते चले गए।
1: ऐसा मैं नहीं, दिमाग में नहीं डाल के सोच रहा था, बट वो शॉट मैंने फील्डर को देखकर खेला, इस वजह से वो मिस हुआ शॉट। अगर मैं थर्डमैन पे ही खेलने जाता तो वो क्लियर हो जाता, बट मैं ऐसा सामने मारने गया इसलिए मेरे से मिस हुआ।
0: उनके बाद ध्रुव जुरेल की 21 गेंदों में 50 रन की पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर के बाद 8 विकेट पर 243 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। आलम ये रहा कि सनराइजर्स के दूसरे गेंदबाजों की बात तो छोड़िए, कप्तान पैट कमिंस ने अपने 4 ओवर में बिना किसी सफलता के 64 रन खर्च कर दिए और आईपीएल इतिहास का ये सबसे महंगा स्पेल रहा। बल्लेबाजों के बाद बारी थी गेंदबाजों की। अनुभवी जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर तूफानी अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजकर शानदार आगाज किया। इस झटके और बड़े स्कोर के दबाव से सनराइजर्स हैदराबाद फिर कभी उबर नहीं पाई। हालांकि तीसरे नंबर पर ईशान किशन के 11 गेंदों पर 33 रन और फिर नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा की छोटी छोटी पारियों ने बुझते चिराग में जैसे थोड़ी देर के लिए उष्मा का संचार किया। लेकिन पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 196 रन पर सिमट गई। इस तरह 47 रनों की बड़ी जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने शानदार अंदाज में क्वालिफायर 2 में जगह बना ली। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उसकी टक्कर गुजरात टाइटंस से इसी मैदान पर होगी। न्यू चंडीगढ़ का यह मैदान राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद खास रहा है। इस मैदान पर उसने अब तक 4 मैच खेले हैं और चारों में उसे जीत मिली है। ऐसे में आरसीबी के हाथों क्वालिफायर 1 में बड़ी शिकस्त खाने वाले गुजरात टाइटंस अब राजस्थान से किस तरह मुकाबला करेगी ये देखना।

दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां छोटे कद के वैभव के बल्ले की विशाल चमक राजस्थान का हौसला सातवें आसमान पर कर रहा होगा, वहीं गुजरात को अपने बिखरे हौसले को समेटकर और सहेजकर मैदान पर उतरना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरा क्वालिफायर भी शानदार होगा। तो हम आपको बता दें कि ये एलिमिनेटर मुकाबला था और चूंकि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पराजित हो गई तो वो अब आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है और दूसरा क्वालिफायर मैच जैसा हमने आपको बताया कि कल खेला जाएगा। और अब जानते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड कल अपनी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने बनाए।

0: पंद्रह वर्षीय सूर्यवंशी के बल्ले का वैभव क्रिकेट की दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। बिहार की मिट्टी में जन्मे और तपे इस बल्लेबाज ने कल 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों वाली 97 रन की तूफानी पारी में न सिर्फ कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए बल्कि कई नई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहले तो वैभव ने 16 गेंद में 50 पूरी करके आईपीएल प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने पांचवीं बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा। पावर प्ले के दौरान वैभव ने 8 छक्के जड़े और पहले 6 ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सनत जयसूर्या, जॉस बटलर और जॉनी बेरेस्टो को पीछे छोड़ा। वैभव ने मुल्लपुर में पावर प्ले में अपना 5वां 50 प्लस का स्कोर बनाया। वे आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वैभव ने एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 12 छक्कों की पारी के दौरान 7वां सिक्स लगाते ही गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वैभव के छक्कों की संख्या 65 तक पहुंच गई है। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ पावर प्ले में 23 गेंद पर 71 रन बनाए। वे आईपीएल की एक सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा 490 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वैभव के रिकॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले अब जान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच जेम्स फ्रैंकलिन का उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना है।
1: It's just his talent. He's an amazing talent that he can then start playing around with that and then start to cause the bowlers to have to go to other places which tend to then go back into his strength. So yeah, just another amazing innings from an amazing talent.
0: वैभव के रिकॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ अपनी पारी में 12 छक्के जड़े। यह चौथी बार है जब उन्होंने एक ही पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल की बराबरी की जिन्होंने 4 बार यह कारनामा किया है। वैभव 12 सिक्स की इस पारी के साथ ही आईपीएल प्लेऑफ की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पहले रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम पर था जिन्होंने 2023 प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर 10 छक्के लगाए थे। वैभव आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मैच में 12 छक्के लगाते हुए उन्होंने इस साल हैदराबाद के खिलाफ लगाए 12 सिक्स के अपने रिकॉर्ड की ही बराबरी की। वैभव ने 97 रन की पारी के साथ इस सीजन अब तक 680 रन बना लिए हैं। वे आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड उनके ही साथी यशस्वी जायसवाल के नाम था जिन्होंने 2023 में राजस्थान के लिए 625 रन बनाए थे। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। वे आईपीएल में 300 या उससे अधिक के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 3 बार 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने निकोलस पूरन और जैक फ्रेजर मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि बल्लों से रनों की आग उगलने वाले सूर्यवंशी ने अब तक कुल 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर लिया है। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा से टीम के उनके सीनियर साथी ध्रुव जुरेल भी अभिभूत दिखे।
2: बेस्ट थिंग अबाउट वैभव व्हिच आई नोटिस इज ही डजंट प्लान एनीथिंग बिकॉज ही प्रैक्टिस अ लॉट एंड ही ऑलवेज बैक हिमसेल्फ दैट्स व्हाट ही डज एवरी टाइम व्हेन ही गो आउट एंड प्ले सो द बेस्ट थिंग अबाउट हिमसेल्फ इज लाइक ही बैक्स हिमसेल्फ And he doesn't have that shadow of doubt that I am not able to do it.
0: अब इंतजार कल के मैच का है। उम्मीद है कि वैभव के बल्ले की धार इस मैच में भी दिखेगी और कई और रिकॉर्ड भी टूटेंगे।

0: यह थी बात आईपीएल की। अब बात महिला क्रिकेट की, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच T20 मैच की सीरीज आज से शुरू हो रही है। बताइए आलोक, क्या कुछ है इस श्रृंखला के बारे में जानकारी?
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला मैच चेम्सफोर्ड के एम्बेसडर क्रूज लाइन ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा मैच ब्रिस्टल के सीट यूनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा मैच टॉन्टन के कूपर एसोसिएशन काउंटी ग्राउंड में होना है। ICC महिला T20 रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंकिंग तीसरी है, जबकि मेजबान इंग्लैंड की रैंकिंग दूसरी है। हरमनप्रीत कौर टीम का नेतृत्व जारी रखेगी, क्योंकि भारत अगले महीने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने संयोजनों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। महिला T20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारी पिछले साल दिसंबर में घरेलू मैदान पर श्रीलंका पर 5-0 की क्लीन स्वीप साथ हुई। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीत हासिल कर इतिहास रचा, जो एक दशक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वहां पहली द्विपक्षीय श्रृंखला जीत थी। हालांकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को शर्मिंदगी झेलना पड़ी, जहां भारत को निराशाजनक तरीके से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड सीरीज भारत को 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 के पहले मैच से पहले निरंतरता हासिल करने और आदर्श संयोजन पर समझौता करने का एक अंतिम अवसर देगी। रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौर, अनदति रेड्डी के तेज गेंदबाजी लाइनअप का नेतृत्व करने की उम्मीद है, जबकि टीम प्रबंधन महिला प्रीमियर लीग में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ नई खिलाड़ी नंदनी शर्मा को मौका दे सकती है। साउथ अफ्रीका सीरीज मिस करने के बाद राधा यादव और यशिका भाटिका टीम में वापस आई।

0: Spotlight. Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaura Dhawanlal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
1: Thank you for having me. Yeah.
0: The cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intrastate movement of food grains and FBS dealers margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms, and just to give another holistic perspective.
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर, यू नो, टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिम्यूनरेशन, मेकिंग श्योर दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, एंड बेसिकली ऑल द एम्स टू सी दैट द मनी गोज टू द राइट पीपल। इन टर्म्स ऑफ द स्केल, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical, because it affects the last mile, you know, the common man?
1: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented, and annually 500 lakh metric tons of food grains are transported across the country. And this, you know, moves from center to state and within the state to districts. And there are nearly 5,35,000 fair price shops, which we call ration shops, through which the food grains are distributed to 80 crore people. It's not a small number. And managing such a big capacity requires technology, and also people who are operating these fair price shops, they also need some kind of margin or remuneration for them to sustain, considering the kind of inflation we have. So that's the idea, like the support that government gives in assisting these dealers to operate these ration shops efficiently. If they are better remunerated, they will function efficiently.

0: राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कटवासरा और उनका पूरा परिवार। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामुरिया और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई बलवंत जाखड़ की, जो भेज रहे हैं बहरवाला खुर्द सिरसा से। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन से, भेजने वाले हैं सुल्तान सिंह तरार और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा उनका पूरा परिवार। जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश गगनेजा उनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। तुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय। गांव चौहल्दा बागपत से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में ही गाँव नथाना पंजाब से भेजने वाले हैं हरजिंदर सिंह छिंदा उनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से भी फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी उनका पूरा परिवार। और ये रावर करनाल से फरमाइश भेज रहे हैं ज्ञान भूषण शर्मा और इनका पूरा परिवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और उनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार।
1: गांव लोहगढ़ ठकरावाला से स्वर्ण सिंह गिल और इनके परिवार के सदस्य। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेजी है रोशन लाल देवांगन और इनके परिवार के सदस्यों ने। जटवाड़ा गाजियाबाद से फरमाइश भेजी है शीशपाल अकेला। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से फरमाइश आई है अनिल मोहन और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ब्रजपाल सिंह चरौरा की आवाज़ में ये रागनी।
2: और जल के अंदर और हाथ गेर दिया और सर्वन

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ब्रजपाल सिंह चरोरा की आवाज़ में ये रागनी।
1: और अतुल भाई, ये किस्सा था श्रवण कुमार का और उस मौके की रागनी, जब राजा दशरथ ने जो है शब्द भेदी बाण चलाया श्रवण कुमार के पानी भरने की गढ़े की आवाज़ पर, तो उस मौके की रागनी हमने अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई।
0: बिल्कुल। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं बिशन सिंह, और बिशन सिंह के लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं पायल बहन। ये SMS हमारे पास में आया है गांव माई चागरे टुंडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले हैं कंचित शर्मा, सतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, मास्टर देवेंद्र सिंह, सर्विस गिरी महाराज, कुमारी तनु, शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा का हमें SMS मिला है। और ये SMS हमें मिला है गाँव चंदन की मुंडैया पुष्ट गुलावठी जनपद बुलंद शहर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं बुल्ले प्रधान, संजू सिंह, सुभाष सिंह, सुरेंद्र सिंह, दिगराज सिंह और भाई करतार सिंह का हमें SMS मिला है, जो सुनना चाहते हैं बिशन सिंह की आवाज़ में ही रागनी। और ये SMS हमारे पास में है गांव नत्थुगढ़ी पोस्ट गुलावटी जनपद बुलंदशहर से, भेजने वाले इंद्रवीर सिंह तेवतिया, मधु देवी, शीतल देवी, साक्षी, प्रिंस, छोटू, प्रत्यक्ष और निष्कर्ष तेवतिया का भी हमें SMS मिला है।
1: अतुल भाई, हम जो अब रागनी सुनवाने वाले हैं अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को, बिशन सिंह की आवाज़ में उसका जो किस्सा रहेगा वो रहेगा नल दमयंती का। और उस मौके की रागनी रहेगी जब जंगल में नल दमयंती दोनों जो है वो अपने नगर से बाहर निकल जाते हैं, और जंगल में जब राजा नल दमयंती से अलग हो जाते हैं, जो कलयुग की माया होती है उस माया से राजा नल की मति भ्रमित हो जाती है और

वो दमयंती को सोती हुई छोड़ के जंगल में और चल देते हैं। और जब जंगल में थोड़ी दूर जाते हैं और चले जाते हैं, तो तब उन्हें दमयंती का ख्याल आता है, और दमयंती के ख्याल में तब वो इस रागनी का, उस मौके की ये रागनी बिशन सिंह द्वारा हम सुना रहे हैं, बोल हैं, सर पे धरा पाप का भार, सूती छोड़ जाई बेकार। तो आइए सुनते हैं बिशन सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपूर्ण होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
8: राम राम, राम।
7: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता थे तुषार पारासा।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह

0: बनाली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम। तो पहले बहन हम हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के, और देखिए आज हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं एक रेडियो रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कंपेरिजन 2026। तो सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन 28 मई से 29 मई 2026 तक NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज दिनांक 28 मई 2026 को इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्यों के कृषि मंत्रियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICAR, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 सम्मेलन देश के कृषि क्षेत्र की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम के स्वागत अभिभाषण में श्री आतिश चंद्रा, सचिव कृषि मंत्रालय ने दो दिनों के सम्मेलन की रूपरेखा और यह सम्मेलन किन मायनों में खास है यह बताते हुए कहा,
3: आदरणीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री भगीरथ चौधरी जी, यहाँ उपस्थित ICAR के DG एवं सेक्रेटरी डेयर डॉक्टर ML जाट जी, एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मनिंदर, प्रमोद एंड अंकिता, जॉइंट सेक्रेटरी संजय, यहाँ उपस्थित राज्यों से आए सभी सचिवगण, वरीय अधिकारीगण, कृषि विभाग और ICAR के अधिकारीगण। देखिए, इस साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आयोजन है, इसका Day 1 थीमेटिक डिस्कशंस के लिए डेडिकेटेड है और सेकेंड डे में हम पॉलिसी लेवल डिस्कशंस करेंगे। सो Day 1 में अभी इनॉग्रल फंक्शन है, इसके बाद हम लोग 3 थीम्स पर आज का डिस्कशन उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो पहली थीम है वो आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो सेकंड थीम है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और जो थर्ड थीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये ब्रॉड थीम्स पर हम स्टेट वाइज इसमें डिस्कशन होगा। जैसे डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन ग्रोथ में हमने वो स्कीम्स ली हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड भारत सरकार की डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं और स्कीम्स हैं। जो Theme 2 है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और उसमें खेत बचाओ एक अभियान हम लोग जो शुरू करेंगे 1 से 15 तारीख तक, उसके बारे में भी इसमें चर्चा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट है वो कवर करता है फार्म क्रेडिट, KCC सैचुरेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, PM आशा जिसे हम दलहन तिलहन का प्रोक्योरमेंट करते हैं। जो कल का कार्यक्रम है वो ये है कि सुबह तो इनॉग्रेशन का एक पोर्शन है, उसके बाद आज की जो डिस्कशंस होंगे उसका समेशन होगा हमारे और DG ICAR के द्वारा, कि हम लोग आगे के जो खरीफ मौसम में जो प्रिपरेशन

0: के लिए आवश्यक क्रॉप एडवाइजरीज है उसके बारे में प्रेजेंटेशंस होंगे। उसके बाद फिर हम लोग ने थीम्स रखे हैं जिसपे हमारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार की प्रायोरिटी और फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर प्रेजेंटेशन करेंगे, और वो कवर करेगा पल्सेस का और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे उसमें क्या प्रगति हुई है और क्या हमारी अपेक्षा है। उसके बाद एक विशेष सत्र रखा गया है जिसमें माननीय गवर्नर गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी आएंगे और उनका नेचुरल फार्मिंग पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं माननीय मंत्रीगण कल उपस्थित होंगे उनके हम लोग सुनेंगे और समेशन फिर लास्ट में हमारे मंत्रीगण लोग करेंगे। तो ये कल की एक डिटेल रूपरेखा है। देखिए मेरा आप लोग से यही अपेक्षा है कि अभी देख लीजिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और क्या चैलेंजेस नेशंस को आ रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारा बहुत स्ट्रांग बैकबोन है हमारी कंट्री का। हम राज्यों के साथ मिल के हम लोग काम करें। माननीय मंत्री जी को डायरेक्शंस है कि स्टेट्स की इश्यूज को बहुत सीरियसली टेकअप किया जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: महानिदेशक ICAR और सचिव डेयर डॉक्टर मांगीलाल जाट ने अपने संबोधन में कहा,
2: माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम कृषि की, उसने जो किया है कि इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन 376.6 मिलियन टन एवर हाईएस्ट, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि पिछले साल और उससे पिछले साल दो साल में हमने 40 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया है और मुझे नहीं लगता कि 20 मिलियन टन एवरेज की स्पीड से कभी भी प्रोडक्शन बढ़ा होगा। इस प्रोडक्शन के बढ़ने में टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलिसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ ये भी है, वन टीम वन नेशन वन एग्रीकल्चर, जो ये टीम एग्रीकल्चर है, ये सब इकट्ठा होके और मंथन करके और एक साथ मिलके काम करते हैं, उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है और मुझे लगता है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, कुछ आंकड़े जो हमें 47 तक चाहिए फूड ग्रेन में वो ऑलरेडी अचीव कर लिए, मुझे लगता है राइस का आंकड़ा तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने सारे देश का डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अभी एनालिसिस चल रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है। हमें राइस 50 मिलियन हेक्टेयर नहीं चाहिए, हमें राइस 2047 में 35 मिलियन हेक्टेयर ही चाहिए। 15 मिलियन हेक्टेयर को लोड शेड करना है तो वो कहाँ हो सकता है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता अलग अलग तरीके से है। जो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, यदि हम 15 मिलियन हेक्टेयर लोड शेड कर दें राइस से, ऑयल सीड पल्सेज में ले जाते हैं, तो एक तरफ हमारी पल्सेज ऑयल सीड की आत्मनिर्भरता होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज हो रहा है उसको कम करके भी हम कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट में हमें मल्टीप्रोन स्ट्रेटेजी भी काम करने की जरूरत है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंट ब्रीडिंग प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी टारगेटिंग डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है सीड की, और आज भी मुझे लगता है कि यदि हम क्वालिटी सीड किसान तक पहुंचा दें तो हमारा 15% 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, और उसके लिए हम लोग सब मिलके हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्टेट के फार्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के फार्म्स हैं, हमारे ICAR इंस्टीट्यूशंस के फार्म्स हैं, मुझे लगता है उन सबको सीड के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है, उसकी भी एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। एक्सटेंशन जैसे पहले था वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, मुझे लगता है हम सब लोगों को, और काफ़ी AI भारत विस्तार जो लॉन्च हुआ उसके साथ में और भी चीज़ें, लेकिन वो सारा जो AI है उसके बैकग्राउंड में डाटा इंपॉर्टेंट है, और डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना, रोबस्ट डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना, मुझे लगता है ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सॉयल हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है, लेकिन सॉयल हेल्थ पे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं है, हमें फिजिकल और बायोलॉजिकल के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है इसी सीजन में हमें शुरू करना, हमारे अपने सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक के सोर्सेज हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जितने भी हैं इंडिजिनस जितना मटेरियल है, हमें 2047 में खाद आयात ना करना पड़े, उस दिशा में काम करने की भी जरूरत है, तभी हमारी जमीन भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए अपने संबोधन में कहा,
3: देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहें, 140 करोड़ का देश

हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूँ अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले हैं। वो दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खाद्यान्न का उत्पादन हो, फलों का हो, सब्जियों का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, किसान दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में हमने कई योजनाएं किसानों के लिए बनाई हुई है, और वो योजना सीधे केंद्र इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, राज्य के माध्यम से ही हमको करना पड़ेगा। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, और इस टीम ने बेहतरीन काम किया है। सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अभी जाट साहब बता रहे थे खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, कल हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं। मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है, इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। यह अब तक का रिकॉर्ड है, और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है। मैं हमारे ICAR के वैज्ञानिक मित्रों को भी आज हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। हमने जो अलग अलग किस्में बीजों की विकसित की है, अलग अलग जो कृषि की पद्धतियाँ बनाई है, उसका भी इसमें अतुलनीय योगदान है। हमारे ICAR के कई संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूँ कि गड़बड़ है तो ठीक करना चाहिए उसको, उनके भी हम समीक्षा करेंगे। बहुत बेहतर काम हुआ है क्षेत्र। मैं राज्य के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि केंद्र कहाँ काम करेगा, हम तो राज्य को सहयोग करते हैं, कृषि राज्य का विषय है, लेकिन आगे करने की गुंजाइश बहुत है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं गेहूं और चावल भंडार भरपूर है, देशवासियों चिंता मत करना, दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, भंडार भरे हुए हैं हमारे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दलहन तिलहन हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों मंगाए बताओ हम, क्यों हम इम्पोर्ट करें? हमारे किसान में सामर्थ्य है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमको बैठ के यही विचार करना है। आज हम बैठेंगे ग्रुप्स की बात पर, 3 ग्रुप में बैठेंगे, उसमें दलहन तिलहन मिशन पर भी बात होगी, आत्मनिर्भरता कैसे। कई मॉडल ICAR ने बनाए, लेकिन वो मॉडल अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो हम कैसे अलग अलग गतिविधियों में किसान को लगा पाए ताकि उसकी आमदनी बढ़े। भाई अन्नदाता सुखी भवा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन उसकी भी तो हालत सुधारना है जो दिनों रात मेहनत कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आपके विचार चाहिए मुझे। एक राज्यों को जिस पर काम करना है वो नकली पेस्टिसाइड, खाद और पेस्टिसाइड अगर कोई नकली बेचता है तो पाप करता है, अपराध करता है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसमें बड़ी भूमिका राज्यों की है। पहले भी मैंने कहा पेस्टिसाइड एक्ट, सीड एक्ट, इस पर तैयारी चल रही, सलाह मशवरा विचार विमर्श चल रहा है, वो भी लाएंगे, लेकिन हमारे पास जो आज मौजूदा व्यवस्था उसके अंतर्गत गड़बड़ करने वाले को ठीक करने का काम हमको करना ही पड़ेगा। बीज सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग विचार कीजिए, सब सीड रोलिंग प्लान कैसे उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करें। माफ करना, कई बार तो मिनी किट बीज के पटते हैं जब बोनी हो जाती है पूरी। अभी हमारे पास समय है, ये इस समय हम पूरी तैयारी करें, क्योंकि मानसून आने में भी देर है, और इस समय मैं तो कहता हूँ अगर जमे तो खेत बचाओ कार्यक्रम में ही सीड मिनी किट का वितरण हो जाए, बीज के टाइम पर पहुँचाएँ। नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो, राज्य के हमारे बीज निगम हो, या बाकी एजेंसीज हो, ये प्लान पूरा बनना चाहिए, सही समय पर सही बीज पहुंच जाए किसान के पास। आखिर हमारा काम किसानों का हित है, इसलिए उस व्यवस्था को हम कैसे ढंग से बनाए। एक बात और जिस पर विचार, फार्मर ID का टारगेट पूरा करना है। भाई कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ राज्यों में अभी शुरू होना है, और इसलिए फार्मर ID मतलब एक फार्मर ID है तो कई योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी को किसान को दिया जा सकता है। इस काम में पूरी ताकत के साथ जुटे। अभी KCC भी बाकी है, हमारे लगभग 7 करोड़ के आसपास KCC बने हैं, अभी लगभग 7.5 करोड़। आपको पता है योजनाओं को अब काफी लचीला

0: ढीला कर दिया गया है। RKBY और कृषि उन्नत की 18 योजनाएं, आपको जरूरत है दो योजनाओं की, तीन योजनाओं की, आप ले लो पूरा पैसा उसमें। अब ये लचीलापन है हर एक राज्य का। मेरे मित्रों, हमें कृषि रोड मैप बनाना है हर एक राज्य। हम पूरा सहयोग करेंगे यहाँ। आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है। और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर हैं, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के विहित ऐसी है। लगातार खेत बचाओ अभियान पर जोर दे रहे हैं। कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी। संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है हमको। अंधाधुंध क्यों चाहिए? मिडिल ईस्ट के संकट के कारण दिक्कतें भी है, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी उपलब्धता में, लेकिन भाई जितना जरूरी उतना ही डालो ना। तो उसके लिए खेत बचाओ अभियान गांव गांव जाना है, वो पूरी ताकत से करना। मैं भी जाऊंगा भाई, जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं, ICR की टीम, KVK की टीम, कृषि विभाग के राज्य का अमला, एक्सटेंशन का आपका अमला पूरा, प्रगतिशील किसान, FPOs, पैक्स के लोग मिलकर हमको प्रयत्न करना पड़ेगा।
1: खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एक विकसित भारत और समृद्ध किसानों की परिकल्पना के अनुरूप एक टिकाऊ, सशक्त और किसान केंद्रित कृषि इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी के साथ खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब सम्पन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार, संयोजक शिवनंदन लाल, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
2: तो अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुनी ये रेडियो रिपोर्ट, और एक बातचीत भी हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती, बुवाई की उन्नत विधियां, और इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर
3: आंचल दास, और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली से शशि कपूर की बातचीत।
4: किसान बहन भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन का पोषण महत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण आजकल सोयाबीन का दूध प्रयोग में किया जाने लगा है। सोयाबीन पनीर, टोफू की भी वर्तमान में बहुत मांग है। लेकिन ये सब काम होंगे तब जब आप सोयाबीन का उत्पादन करेंगे, यानी कि खेती करेंगे। तो सोयाबीन की खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी इसकी किस्में होती हैं जिनका आप बिजाई कर सकते हैं, और इसकी पोषण का महत्व क्या होता है, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, खेत की तैयारी आप कैसे करें, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंचल दास जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं ICAR IARI नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पोषण महत्व कितना ज़्यादा है सोयाबीन का।
5: सोयाबीन का पोषण महत्व बहुत अधिक है। इसको पोर मैन्स मीट भी कहा जाता है, और इसको साथ में गोल्डन बीन भी कहा जाता है। तो इनको इतने ज़्यादा महत्व देने का कारण यह है कि सोयाबीन का जो दाना है उसमें 40-45% तक प्रोटीन होता है, 18-22% उसमें ऑयल होता है, या उसको हम तेल कहते हैं, तेल होता है, और साथ में इसमें पोषक तत्व होते हैं, 4-5% मिनरल्स रहते हैं उसमें, साथ में विटामिन रिच होता है, विटामिन से पूरा ये डेंस रहता है, राइबोफ्लेविन और थायमिन जैसे इसमें विटामिन रहते हैं, और विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है। साथ में सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए ही उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है, ये हमारी भूमि जहाँ पर इसको उगाया जाता है उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसकी जड़ों में कुछ ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, जिसकी ये कैपेसिटी है कि जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, नत्रजन है, उसका यह स्थिरीकरण करता है और भूमि को उर्वरता शक्ति है बढ़ाने में काम करता है। साथ ही में जब सोयाबीन पक जाती है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ने लगती हैं, तकरीबन 1-1.5 टन तक तो इसकी पत्तियाँ ही हैं, जिसमें वो भी न्यूट्रिएंट रिच रहती हैं, उसमें पोषक तत्व रहते हैं, उस पूरे जमीन में मिलते हैं, और ये एनिमल की फीड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं कहूँगा इसका बहुत ज़्यादा महत्व है पोषण के हिसाब से।
4: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी पोषण के लिए बहुत अच्छा है सोयाबीन, और साथ ही साथ हमारी जो खेती है उसकी मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका सोयाबीन

0: सोयाबीन निभाता है। अगर हम बात करें अपने देश की तो कहां कहां पर सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है?
1: सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, जो कि टोटल प्रोडक्शन का 45% मध्य प्रदेश से आता है और 40% जो उपज है सोयाबीन की वो महाराष्ट्र से आती है। साथ में कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इनको पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो असम, मेघालय में, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आदि स्टेटों में इन सोयाबीन को उगाया जाता है।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो जो सही समय है कब तक इसकी बिजाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस खेत में वो सोयाबीन करना चाहते हैं तो किस तरह से खेत का चयन करें?
1: बुवाई का समय सोयाबीन का अलग अलग इलाकों में अलग अलग से होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें तो उसमें मई से जून के अंदर इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। अगर हम उत्तरी मैदानी इलाकों की बात करें तो 15 जून से 5 जुलाई तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो उसमें 15 जून से लेके 15 जुलाई तक इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो 15 जून से लेके हम 31 जुलाई तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन बुवाई करने से पहले हमको खेत का चयन करना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर तो हर तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो भूमि है वो रेतली दोमट से दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो। और इसको काली मिट्टी, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में, जो कुछ इलाकों में महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, उनमें भी सोयाबीन को अच्छे से उगाया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें जल निकासी का प्रबंधन अच्छे से किया हो और जो सॉइल का पीएच है क्षारीय नहीं होना चाहिए, 6 से 7.5 तक पीएच मिट्टी की है तो उसमें इसको आराम से अच्छे से उगाया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने जो खेत का चयन भी कर लिया है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने खेत से तो अच्छे बीज की भी आवश्यकता होती है, अच्छी किस्म की आवश्यकता होती है। तो सोयाबीन की किस्मों के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं?
1: अगर आपका बीज अच्छा है तो आपकी फसल भी अच्छे से हो सकती है। और किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि जो बीज है वो प्रमाणित सेंटरों से ही लें, यूनिवर्सिटी से, केवीके से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ से बीज लें। और साथ में जो इसकी किस्में हैं, हर किस्म को हर जगह नहीं उगाया जा सकता। अगर हम उत्तरी पहाड़ी इलाकों की बात करें, हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, इन इलाकों में पालम सोया, हरा सोया, BL सोया 2, BL सोया 47 या कुछ पंजाब की वरायटी भी हैं, जैसे SL 958, SL 744 आदि किस्मों को उसमें उगाया जा सकता है। और अगर हम उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके लिए जो किस्में हैं PUSA 97, PUSA 12, PS जो पंतनगरी वरायटी है, PS 26, PS 27, PS 1347, और हम थोड़ा नीचे जाएं मध्य भारत की ओर जाएं तो इसके लिए JS 9305, NRC 30, NRC 37, NRC 130, NRC 138, NRC 142 आदि किस्मों को अच्छे से उगाया जा सकता है। और हम और नीचे जाएं, दक्षिण भारत में जाएं तो उसमें भी JS 9305, साथ में हम उसमें MACS 1460, MACS 1281, 1188 और DSB 34 आदि किस्मों को उसमें उगाया जा सकता है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो उसमें DSB 21, JS 93.5, JS 97.52, DSB 32 आदि किस्मों को हम उगा सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही उन्नतशील किस्मों के बारे में आपने बताया है। अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई हैं किस्में ले आए हैं अच्छी उन्नतशील, तो खेत की तैयारी भी आवश्यक हो जाता है। तो खेत की तैयारी कैसे करें, उस समय किस तरह से खाद का प्रबंधन करें, और साथ ही साथ बीज उपचार का कितना महत्व है?
1: देखिए, सोयाबीन के लिए बीज उपचार का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप बीज को उपचार नहीं करेंगे तो कीट और फफूंद जो बीमारियां हैं, फंगल बीमारियां हैं, वो उसमें लगती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो महीन दानों वाली जो किस्में हैं उसके लिए 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपने बीज लगाना चाहिए। अगर मध्यम साइज की वेराइटी हैं, किस्में हैं, तो उसमें 70 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर मोटा दाना है तो उसके लिए 80 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज की।
2: तो पायल बहन, अभी हमारे भाई सभी भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत, सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती, बुवाई की उन्नत विधियां, और इसकी जानकारी दी डॉक्टर आंचल दास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शशि कपूर। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7:30 और 14 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गज़ल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली कव्वाली जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये हमने ली है फिल्म अनोखी अदा से और इसे आवाज़ दी हैं किशोर कुमार साहब ने। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।
1: है दिलों का न पूछो सनम आपका।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

ये जो अभी आप कव्वाली सुन रहे थे, इसको स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म है अमर अकबर एंथोनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक और गज़ल फिल्म ओम राव जान से। गायक कलाकार हैं बेला सुलाखी।

0: बेला सुलाखे के स्वर में अभी ये गज़ल आपने फिल्म ओबराब जान से सुनी, और इसी के साथ गज़ल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त, यातायात को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विस्तार सड़क 2 के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम से उत्तराखंड तक सीधा संपर्क मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को शहरी विस्तार सड़क 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे भारी वाहनों का बेहतर डायवर्जन होगा और जाम में कमी आएगी। वहीं एम्स से गुरुग्राम तक 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे धौलाकुआं और महिपालपुर क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय हरित और जाम मुक्त बनाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दिल्ली भाजपा कार्यालय पर श्री मल्होत्रा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दायित्व उनके लिए संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास में पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी को श्री मल्होत्रा के अनुभव से फायदा होगा।
5: पार्टी में हर दायित्व बड़ा होता है और ये जो दायित्व हर जी को मिला है कि उनको अनुभव बहुत है, प्रशासनिक भी है और संगठन का भी है, तो निस्संदेह उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और पार्टी को और ऊंचाइयों तक वो उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से दिल्ली में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी और जनसेवा के कार्यों को और सशक्त बना सकेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज देश की लोकतांत्रिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकलन जारी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि लोकतंत्र संवाद, बहस, सहमति और असहमति पर फलता फूलता है। इस अवसर पर 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के संकलन का विमोचन किया गया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह आने वाली पीढ़ियों और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक सार्थक मार्गदर्शक साबित

0: होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र वैश्विक मंच पर एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण मात्र 11 महीनों में 22 एकड़ क्षेत्र में किया गया था, जो आज भी आश्चर्य का विषय है।
1: वैसे इन्होंने एक साल में इसकी सुंदरता को, हमारे इतिहास को, ये पूरा जीवित करके रख दिया।

0: हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब वो आके इस पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, हम सब आपके ऋणी हैं न स्पीकर महोदय कि आपने छोटा काम नहीं किया है। ये सब कहीं पे किसी कमरे में धूल मिट्टी खा रहा था, आप उसको लेकर आए, आपने उसको पढ़ा, आपने टीम लगाई और आपने इतिहासकार लगाए, उसके बाद में ये सारे इतिहास को संयोजना, उसको लेकर आना छोटा काम नहीं है, और वो भी इतने कम समय में। इसलिए हम सभी आपके प्रति ऋणी रहेंगे।
1: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये सदन देश की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल ही में प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री इस बात की पुष्टि करती है कि ये सदन ऐतिहासिक महत्व रखता है।
2: जो सदन है ये एक ऐतिहासिक स्थल, जनवरी 1926 में पहली परंपरा वीर विठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद जो स्थापित की, हर वर्ष वायसराय साल के पहले सिटिंग पर सदन को एड्रेस करने आते। विठल भाई जी अध्यक्ष थे, उन्होंने वायसराय को मैसेज किया कि वो आने से पहले ये विचार कर ले कि जो परंपरा थी मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। परंपरा ये थी कि जब वायसराय आते थे तो अध्यक्ष जाकर नीचे बैठ जाते थे, खड़े होकर उनका स्वागत करते थे बाकी सदस्यों के साथ, और मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं इस सदन का कस्टोडियन हूं, इसलिए मंच पर एक नहीं दो कुर्सी लगेंगी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुराने कचरे के बायो माइनिंग और बायो रेमिडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट पर स्थित कूड़े के विशाल पहाड़ समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुराने कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस अवसर पर छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानसिक सशक्तिकरण और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भूमिका केवल प्रशासक की ही नहीं बल्कि अभिभावक की भी होती है। उन्होंने कहा कि कई छात्राएं मासिक धर्म के दौरान असहज महसूस करती हैं और ऐसे समय में उन्हें संवेदनशीलता, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है।
3: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्वच्छ टॉयलेट, मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक शौचालय और आरोग्य मंदिर में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों के नियमित मेंटेनेंस और समय पर रिफिल सुनिश्चित के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 से 9 तक के पाठ्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद दिल्ली सरकार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी उपलब्ध कराएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी यादव।
1: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण केंद्र सरकार के निर्धारित वित्तीय ढांचे, तकनीकी दिशा निर्देशों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण और उन पर किए गए व्यय को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर सरकार ने कहा कि ये दावा गलत है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल के तहत हर केंद्र के लिए भवन सुधार पर 25 लाख रुपए और फर्नीचर तथा जरूरी सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपए तय हैं। सभी काम इसी निर्धारित बजट के भीतर किए गए हैं। विभाग ने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली में कुल 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनः

0: मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनः निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया है कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य नमाज ईदगाह जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में अदा की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पर्व समाज में शांति, भाईचारे और करुणा की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सावरकर जी ने भारत माता के अनन्य भक्त, एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अदम्य साहस के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सर्वप्रथम के संकल्प, सांस्कृतिक गौरव और अखंड भारत की भावना को समर्पित था। उर्दू साहित्य की एक महान आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा है और राजधानी में आज शाम कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है बरसात की रात और इसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

गीतमालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चेतन के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म श्री 420 से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफीक।

फिल्म श्री 420 से ये बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो कि हमने लिया है, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और ये इसी फिल्म का शीर्षक गीत है और इसको आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और साथियों ने, और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: आदमी खिलौना है, इसी फिल्म के शीर्षक गीत के साथ ये गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे

0: नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
2: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
2: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए

0: से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डी के शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी

0: समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरी में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुज़ाकरात, बहस व मुबासे, इत्तफाक राय और इख्तलाफ राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमू से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्वेशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्वेशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नज़र उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीक़ेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

三，蛋花。

فأجاءها المخاض إلى

0: Spotlight. Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaura Dhawanlal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
1: Thank you for having me. Yep.
0: The cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intrastate movement of food grains and FBS dealers margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who is just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms, and just to give another holistic perspective.
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय

0: करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने की घटना के बाद करीब 30 धार्मिक संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कहा कि पूजा स्थल शांति, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के प्रतीक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार को लेकर समझौते के मसौदे पर सहमति बनी है। हालांकि इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान हार्मुज जल डमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल देगा और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को 30 दिनों के भीतर हटाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various development projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Mr. Shah also recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. He highlighted his supreme sacrifice and lifelong dedication to the motherland. The longest-serving chief minister in Karnataka, Siddaramaiah, submitted his resignation at the governor's office in Bengaluru yesterday after a breakfast meeting with his cabinet colleagues. Addressing the media persons later without naming D.K. Shivakumar, he asked the governor to invite the CM designate for taking up the mantle of chief ministership in the state. Prime Minister Narendra Modi yesterday met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Eid al-Adha, the festival of sacrifice, was celebrated with religious fervor and due reverence across the country yesterday. The devotees offered Eid prayers in Eidgahs and mosques in the morning. Later, they exchanged Eid greetings. In Delhi, main Eid prayers congregation were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Eid al-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Hazrat Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level review meeting at the CBSE headquarters in New Delhi to review issues related to the evaluation and post-result processes of the CBSE Class 12 examinations. During the meeting, the minister directed officials to take all necessary measures to ensure that issues faced by students are resolved in a timely, transparent and student-friendly manner. Mr. Pradhan reviewed the progress of post-result services with a focus on strengthening student support system, improving the evaluation and monitoring framework, enhancing the CBSE digital platform and making examination-related services more accessible and efficient for students. Reiterating that students' interests remain the government's foremost priority, The minister assured that strict action will be taken.

हाँ, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, मुझे भी तो एक मौका मिल गया आपसे बात करने का। गीतों का वो दौर जब गीत के बोल आपके आम जिंदगी को भी छू जाते थे, और यही कारण है कि उस वक्त के गीत आज भी तो हमें याद है। और गीतों का वो सफ़र जब शुरू होता है तो कहाँ ही रुकता है, क्योंकि उस ज़माने में एक एक फिल्म में तकरीबन छः छः सात सात गीत होते थे, वो भी सारे के सारे हिट, यानी बहुत ही खूबसूरत।

और जब गोल्डन एरा की बात हो रही है तो वो गाना कैसे हम भूल सकते हैं जब आवाज़ देकर कह रहा है कोई कि हमें तो बुला लो। जी हाँ, वो गीत, उसमें ऐसा कशिश, ऐसी मोहब्बत, गीत के हर एक बोल ने अपने हर एक शब्द से आवाज़ लगाई है।

हाँ, आवाज़ देकर जहाँ पर बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है हमें बुला लो, वहीं पर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चलो मैं हार गई हूँ, अब मान जाओ। जी हाँ, दोनों में मोहब्बत को रोका ही तो जा रहा है। मोहब्बत भरे नगमे आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे, फिल्म संगीत गोल्डन एरा के पूजा भारती के साथ।

लेकिन कहीं कहीं ये भी रहा कि जब दूरी हो जाती है तब वो याद, वो प्यार, वो मोहब्बत, सब कुछ इस तरह लगता है जैसे सब झूठ तो नहीं। और ये लगने लग जाता है कि मुझे शायद भुला दिया गया है, लेकिन मोहब्बत कभी भी किसी के दिल से जुदा नहीं हो सकता।

यूं ही तो जीवन ना जिए, यूं ही तो जीवन ना जिया, जिया तो बस तुम्हारे प्यार में पिया।

ऐसा तो कोई भी नहीं। जी हाँ, मोहब्बत तो उसी से हो जाती है जो बिल्कुल अलग लगता हो, और हर एक नज़र में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो इंसान वाकई में सबसे अलग है।

और फिर कहा जाता है कि जहाँ मोहब्बत है वही तकरार है, और वहीं पर ऐसी उलझन भी है जहाँ पूरी दुनिया शामिल हो जाती है। तब तो मोहब्बत का कह लीजिए एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। लेकिन जो पास हुए, मान लीजिए सच्ची मोहब्बत है ये। मोहब्बत की दुनिया कुछ अलग ही होती है। उन्हीं दुनिया में जब गीत के झनकार गूंजते हैं तो मोहब्बत और खूबसूरत नजर आने लगती है।

यूं ही तुम्हें देखते रहें और मोहब्बत बढ़ती जाए। मोहब्बत का एक समय ऐसा भी होता है जब आँखों में, सपनों में, ख्यालों में, दुनिया में हर एक जगह वो ही नजर आता है। मोहब्बत में डूबे हुए लोग किसी को न जानते हैं न पहचानते हैं, सिर्फ एक ही भाषा उन्हें पता होती है, मोहब्बत। और वो उन सारे मोहब्बत करने वाले

0: वालों के साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये प्यार, ये मोहब्बत दिल से किस कदर जुड़ा है और दिल के कितने करीब है। इन्हीं मोहब्बत में डूबे हुए कई गीतों में एक गीत ये भी है।
1: न झटको जुल्फ से पा

यूं ही कहते सुनते मोहब्बत में दिन गुजरते रहते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं।

तकरार होता है और फिर देखा गया है मोहब्बत और प्रगाढ़ हो जाता है। कहते हैं कि मोहब्बत पर मौसम का अलग ही असर होता है। हर एक समय, हर एक जन्म

गाने जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, और मोहब्बत में पड़े हुए दीवाने इन्हीं गीतों को अपना जीवन मानते हैं। मोहब्बत के ऐसे ही कई गाने, कई अफसाने हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कि मोहब्बत के इन समा को यहीं पर रोक दिया जाए। जी हाँ, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम का अब समय संपन्न होता है। एक आखिरी गीत है आपके लिए, लेकिन मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्ष

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम, खूबसूरत गीत आपके लिए।

जल दाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी

0: बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: इसी के साथ गीत बहार फिल्म म्यूजिक नॉनस्टॉप का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
4: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और

जी हाँ, पूरा दुख और आधा चांद, बहुत ही खूबसूरत गज़ल ये अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज़ में। गुलूकार यानी कि जो गज़ल की रचना थी वो थी परवीन शाकिर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और गज़ल जगजीत सिंह के स्वर में।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं एक और गज़ल। कलाकार हैं शुमोना रॉय विश्वास।

जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा

0: खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: इसी के साथ गजल गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
2: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। नाद ब्रह्म के कार्यक्रम कर्नाटक संगीत में आइए अब सुनते हैं उषा विजय कुमार का गोट्टू वाद्यम, राग है चारू केसी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उषा विजय कुमार का गोट्टू वादम, राग था चारू केसी। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम यानी कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा योगबद्ध पद्मासन। 5:30 पर स्वर रंजनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे प्रसेनजीत रॉय का सितार पर बजाया गया राग ललित। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक के भजन। 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया गया राग चारुकेशी। गांधी चर्चा का समय रहेगा सुबह 9:15, जिसमें एक वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे गौरव कांत शर्मा। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक, पंजाबी कार्यक्रम। और दिन में 10:10 पर सुबह आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

0: सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10 और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रसन्नजीत राय का सितार वादन। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम घर आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर। दिन में दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, फिल्म होगी गाइड। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह को के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे।

0: उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। वो कर्नाटक के दावणगेरे स्थित यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन कल पणजी के गोवा में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड्डी स्थित CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। वो केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कल श्री मांडविया मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ राज्य की राजधानी में 132.9 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। हांगकांग में 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the dedication

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10।

और 22 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है योग बद्ध पद्मासन।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा।

印度的李广播电台，听众朋友们，现在我们播送一首新交歌曲，请收听。